आसाराम कहत हैं भाई।

करो हरे जगह।

करो हरि जगत जगतार भजन करो हरि जगत जगतार भजन।

रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर आ गई है आप सबके दोस्त वर्षा लेकर आपके लिए एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है गली गली सिम सिम, जो है आपके लिए खास। जैसे आसमान का सितारा धरती पे उतारा, फिर उसने आकर खोला अपना जादू का पिटारा, जिसमें है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। तो सुनते हैं लेकर चटकारा गली गली सिम सिम।

0: यार बड़ी भूख लगी है, जरा देखूं तो आज क्या है किचन में। ये क्या, फिर से वही गोभी और वही आलू। भाई आलू गोभी खा खा के मेरे दांत भी थक गए हैं, कुछ नया भी तो होना चाहिए। रोज रोज कुछ नया नहीं खाऊंगा तो मुँह का स्वाद कैसे बदलेगा। अरे हाँ, खाने से याद आया, आज ना गली में एक नाटक होने जा रहा है जिसमें अपना गुगली बना है राजा और चमकी बनी है मंत्री। लू जी, नाटक शुरू होने जा रहा है, जल्दी जल्दी सब अपनी जगह पर बैठ जाओ। आज महाराज गुगली के दरबार में एक नए मंत्री आए हैं।
1: महाराज गुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, हमारे नए मंत्री के स्वागत में पूरे दरबार को खास शाही पकवान परोसा जाए।
1: पेश है शाही पकवान।
2: मेरा मन पसंद शाही पकवान।
3: फिर वही शाही पकवान, रोज रोज शाही पकवान, बोर हुए हम खाते खाते रोज यही शाही पकवान।
4: कुछ करिए मंत्री चमकी।
5: क्या हर रोज यही पकवान बनता है? लगता है शाही रसोइये से बात करनी पड़ेगी। नमस्ते शाही रसोइये।
6: अरे मंत्री चमकी, आप
5: बताओ रसोइये, कल दरबार के लिए खाने में क्या बनाओगे?
6: शाही पकवान, और क्या, रोज वही बनाओ वही खाओ। मैं तो शाही पकवान से बोर हो गया हूँ, मुझे सपने आते हैं नई नई सब्जियों के, भिंडी के, गाजर के, रसीले लाल टमाटर के।
5: लेकिन तुम हर दिन कुछ नया क्यों नहीं बनाते?
6: मंत्री चमकी जी, हमारे महाराज गुगली रोज शाही पकवान ही खाते हैं और साथ में हमें भी खिलाते हैं।
5: अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
0: वैसे बात तो सही है, अगर कोई नया नया खाना ट्राई नहीं करेगा तो उसकी सेहत कैसे बनेगी। मुझे ही देख लो, लंबा चौड़ा तगड़ा हूँ, बिल्कुल सलमान की तरह। और फिर अगले दिन दरबार में
2: हमें भूख लगी है, शाही पकवान लाओ।
6: ये लीजिए महाराज।
2: अरे वाह, आज तो हमारे शाही पकवान से कुछ ज्यादा ही अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ मेरे पास लाओ शाही रसोइये।
6: जी महाराज।
2: ये मेरा शाही पकवान नहीं है, तुमने नया पकवान बनाया।
6: जी महाराज।
2: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
5: गुस्सा मत कीजिए महाराज, आप टेस्ट तो करके देखिए।
1: महाराज ने चम्मच को उठाया,
7: पूरे दरबार में सन्नाटा छाया।
2: भाई वाह,
4: महाराज को नया पकवान पसंद आया।
2: मैं करता हूँ ये ऐलान, अब राज्य में रोज बनेंगे तरह तरह के पकवान।
1: महाराज गुगली की जय हो, मंत्री चमकी की जय हो।
0: ओए बल्ले बल्ले, गुगली महाराज खुश और राज्य के सब लोग भी खुश। रोज नया खाओ, पौष्टिक खाओ और अपनी सेहत बनाओ। सब लोग इतने खुश थे कि उन्होंने तो गाना ही सुना दिया। लो जी।

0: मजा आ गया। अब सब बच्चों की मम्मी और डैडी को मैं एक राज की बात बताता हूँ। अगर कभी आपके चुन्नू मुन्नू बोलू मोलू नई नई चीजें खाने से मना कर दे तो मैं आपको एक तरकीब बताऊं। कोई बात नहीं, थैंक यू बाद में बोल लेना। तो सुनिए, आप सब अपने बच्चों के साथ मिलकर खाना बनाएं और फिर देखिए कि उन्हें अलग अलग चीजें खिलाना आसान हो जाएगा। जैसे कि मेरी दोस्त पल्लवी और उसकी मम्मी मिलकर कुछ बना रहे हैं।
1: सब्जियों और फलों में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है आम। आम फलों का राजा है। मेरा नाम पल्लवी। सबसे अच्छे आम गर्मियों में ही मिलते हैं। आम किसी भी तरह खाया जा सकता है और आज मैं, मम्मी और शिरीन मिलकर स्वादिष्ट भेलपूरी बनाएंगे। ये बनेगी खट्टी मीठी अम्बी से, मतलब कच्चा आम। गर्मी में ये चटपटी भेलपूरी कितनी ताजगी भरी होती है। अब हम भेलपूरी में कुछ सब्जियां और मसाले डालेंगे। तीखा प्याज, लाल लाल टमाटर, मिर्च, बड़ा मजा आ रहा है। भेलपूरी में हम मुरमुरे जरूर डालते हैं और फिर मिला देते हैं सभी सामान। बन गई चटपटी भेलपूरी। अब आएगा मजा, हम सब साथ मिलकर खाएंगे चटपटी भेलपूरी।
0: देखा कितने बढ़िया तरीके से पल्लवी और उसकी मम्मी ने साथ में भेलपूरी बनाई। भाई वाह, अब मैं तैयार हूँ चमकी और गुगली के साथ एक गेम खेलने के लिए। चलो चलकर देखते हैं ये दोनों क्या खेल रहे हैं।
2: गुगली, मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगी और एक आवाज भी सुनाऊंगी। तुम्हें आवाज सुनकर उस खाने की चीज का नाम बताना है। तो तैयार?
3: तैयार।
2: तो सुनो पहेली। उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल, इसको अगर दांत से काटो तो आती है ये आवाज। बताओ गुगली, मैं कौन सी सब्जी के बारे में बात कर रही हूँ?
3: उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल।
2: हाँ, एक बार फिर से आवाज सुन लो।
3: लाल सब्जी जिसको खाने से ऐसी करारी आवाज आती है। समझ गया, ये है गाजर।
2: बिल्कुल सही, गाजर, जिसको इंग्लिश में कैरेट भी कहते हैं। गुगी गुगी, ये तो बहुत मजेदार गेम है। चलो अब हम ये गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। क्यों, खेलोगे ना तुम मेरे साथ? हुँ?
3: तो हो जाओ तैयार। चलो चमकी, पहला सवाल तुम पूछो।
2: ठीक है, सुनो दोस्तों। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आवाज सुनो और बताओ

0: क्या है मेरा नाम?
1: रुको रुको, सोचने दो। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आ गया समझ। चमकी मैं बताऊँ?
0: अरे गुगी अभी रुको, बाकी सबको सोचने का मौका दे दो। क्यों दोस्तों, क्या तुम्हें पता चला? एक बार फिर से सुनोगे आवाज?
1: चमकी अब तो जवाब बताने दो।
0: अच्छा अच्छा बताओ, क्या है जवाब?
1: दूध, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मिल्क।
0: एकदम सही, क्या तुमने भी दूध कहा? बहुत बढ़िया,
1: मजा आया ना? अब यार ये बताओ, इसको छिलो तो कोई आवाज नहीं आती, इसको खाओ तो भी कोई आवाज नहीं आती, पर इसके छिलके पे जब कोई फिसलता है तो बड़ी जोर की आवाज आती है। जी क्या बोला? केला यानी बनाना। ओए सही जवाब। ओ यार आज खाने के बारे में कितना कुछ सीखा हम सबने। हर तरह का खाना खाओ और सेहत बनाओ। अब वक्त है मिलने का हमारी प्यारी नटखट चुलबुली चमकी से। सुनते हैं कि आज चमकी कौन सी मजेदार बातें कर रही है अपने दोस्तों से।
0: कल हमारी गली में पिकनिक थी, सब लोग अपने घर से अलग अलग चीजें बना के लाए थे। पता है बुम्बा ने बोला ये सब पौष्टिक खाना है, मगर सब इतनी ढेर सारी सब्जियाँ क्यों खाते हैं? मैं बात में पूछती हूँ। हाय मेरा नाम है चमकी, और आप?
2: अब्दुल रहमान।
0: अब्दुल रहमान जी, पौष्टिक खाना क्या होता है?
2: जैसा कि नाम से ही मालूम है कि पौष्टिक खाना बच्चों को देने से उनकी हड्डियों में मजबूती पैदा होती है, उनका दिमाग बहुत अच्छी तरह काम करता है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है, उनका पढ़ाई में रुचि होती है, खेलने में भी रुचि होती है। पौष्टिक खाना जीवन में तरक्की करने के लिए निहायत जरूरी है।
0: और आपके गांव में कौन कौन सी पौष्टिक सब्जियां उगती हैं?
2: पालक है, टिंडा है और बहुत सारी सब्जियां जैसे लौकी है।
0: मुझे भी पौष्टिक खाना खाना चाहिए ताकि मैं और स्ट्रांग बन जाऊं, मगर मुझे ना कुछ कुछ हरी सब्जियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्या करूं? हाँ गुड़गांव में अपनी दोस्त से पूछती हूँ।
3: मेरा नाम शांति है।
0: शांति, सुमित और उसके भाई बहनों को कौन सी सब्जी अच्छी नहीं लगती?
3: वो तो बस आलू की ही सब्जी पसंद करती है और कुछ भी नहीं खाना चाहती है।
0: हाँ सिर्फ आलू? हाँ फिर शांति तुम उन्हें कैसे खिलाती हो?
3: उन्हें कहती हूँ कि बेटे खा लो, थोड़ा भी खाना चाहिए, ताकत की चीज है हरी सब्जी खाने से, मगर खाती नहीं है उन लोग।
0: अरे मेरे गुड़गांव के दोस्त तो कोई भी सब्जी नहीं खाते। बुंदेलखंड में पूछती हूँ। हाय आपका नाम क्या है?
4: हमारा नाम है लक्ष्मी बाई।
0: आप अपने घर पे कौन कौन से पौष्टिक खाना बनाते हो?
4: दाल बनती, चावल बनते, पालक की भाजी बनती, मूली का साग बनता, सरसों का साग बनता, मेथी का बनता, चनों का भी बनता, सब बना के ये बच्चों को देते हैं।
0: अरे वाह, बुंदेलखंड में मेरे दोस्त तो सारी पौष्टिक सब्जियाँ खाते हैं। एक और दोस्त से भी पूछती हूँ। हाय वैष्णवी, ऐसी कौन सी सब्जी है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती?
5: पालक।
0: ओ फिर तुम पालक कैसे खाती हो?
5: जब मम्मी अपने हाथ से खिलाती है।
0: हाँ मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है। शारदा आप वैष्णवी को पालक और पौष्टिक सब्जियाँ कैसे खिलाती है?
6: मैं वैष्णवी को पालक कहानियाँ सुना के खिलाती हूँ।
0: ये अच्छा तरीका है, मैं भी कहानी सुनकर सारी सब्जियाँ खाऊंगी। मुझे तो भूख लग रही है। चलो सुने कि पौष्टिक सब्जियों को और स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं?
4: मैं करेला बनाती हूँ तो उसको छील के और अपने कढ़ाई में रख देती हूँ, तेल डालूँ 2 चम्मच, फ्राई करी लाल हो गए इनको निकाल के रख देती हूँ, फिर 1 चम्मच दालचीनी, जीरा का को गरम मसाला और अजवाइन है, मेथी है, सब हम लोग पीस के उसको मसाला अच्छा बना के उसको फ्राई करके बच्चों को फिर खिलाते हैं।
0: अब मैं सब कुछ खाऊंगी, तुम भी सब सब्जियां खाना, ठीक है दोस्तों? ओके बाय
1: बाय। मजा आया ना दोस्तों?

0: दोस्तों, मजा आया ना आज का हमारा जो एपिसोड था, यानी के गुगली महाराजा। भाई वाह, क्या बात है, गुगली महाराजा की तो बात ही अलग है। और फिर हमारे कार्यक्रम में जो कितनी अच्छी अच्छी बातें करी गई हैं, भाई हरी सब्जी क्या होती है, हरी सब्जी, मुझे तो उसका कलर ही बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है कि हरी सब्जी का जो रंग होता है यानी कि ग्रीन, और ग्रीन रंग तो सभी को पसंद होता है, जैसे तो इस पर पेड़े भी कितने हरे हरे हैं, तो वो हमें कितने सुंदर लगते हैं। और जब पेड़े सुंदर लगते हैं तो उसी तरह सब्जियां भी सुंदर लगती हैं, और जब सुंदर सुंदर चीजें हम खाएंगे तो हम सुंदर सुंदर बन जाएंगे। अब इस बात पर हमारे साथ में मौजूद है पजनपुरा की गीता जी, तो आइए वो क्या कहती है इस बारे में।
1: नमस्कार, मेरा नाम वर्षा है, आपका नाम क्या है?
2: नमस्कार, मेरा नाम गीता है
1: जी। तो गीता जी, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि हरी सब्जियों के बारे में बहुत झगड़ा होता है कि बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो क्या कारण हो सकता है कि बच्चे हरी सब्जियां क्यों नहीं खाते हैं?
2: उनका कारण एक ही है कि वो हरी सब्जी पसंद नहीं करते, इसीलिए उनको अलग तरीके से हम खिला सकते हैं बच्चों, क्योंकि हरी सब्जी यहाँ तक कि बड़े भी नहीं खाते।
1: तो इनका मतलब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय है जिस तरीके से हम उनको हरी सब्जियां खिला सकते हैं?
2: हाँ, ऐसा दूसरा तरीका भी है, जैसे कि हमारी हरी सब्जी है जैसे लौकी है, तो उसका हम कोफ्ता बना दें तो बच्चे पसंद कर लेंगे खाने के लिए। और दूसरी तरह जैसे पालक है, तो पालक भी नहीं खाते तो उनको मतलब पालक पनीर जैसा पनीर मिला के बनाए तो वो पसंद कर लेंगे, कि आलू में बनाए तो पसंद कर लेंगे। ज्यादातर बच्चे आलू ही पसंद करते हैं, इसलिए आलू में हम मिक्स करके बना सकते हैं, या पनीर से पालक पनीर ही बनती है ना, तो वो वैसा ही बना सकते हैं, तो बच्चे पसंद कर लेते हैं।
1: अच्छा, और क्या क्या वजह है जिनसे बच्चे नहीं खाते हैं, मतलब बच्चों को खाने में अक्सर क्या पसंद होता है?
2: बच्चों को खाने में अक्सर पसंद होता है कि उनको चटपटी सब्जी मिले, और हरी सब्जी तो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, जैसे कि आलू हुए, छोले हुए, और दाल, मतलब ये दाल चावल तो वो खाते ही है, और बल्कि हरी सब्जी बहुत ही कम खाते, इसलिए हमें अलग तरीके से उनको बना के हरी सब्जी, क्योंकि पौष्टिक होती है तो उनको आहार मिलना चाहिए, तो इसलिए हमें दूसरे तरीके से बनाकर उनको खिलाना चाहिए।
1: जी, आपने बताया जैसे कि हरी सब्जी पौष्टिक होती है, तो किस तरह से हमारे शरीर को फायदा करती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
2: हमारे शरीर को जो हरी सब्जियों से विटामिन मिलती है तो फायदा ही तो होता है कि हरी सब्जियां ना खाएं, तो कि अगर हम बच्चों को खिलाएं ना तो मतलब पौष्टिक के आहार कम ही हो सकती है, जैसे कि बड़े हों या छोटे बच्चे हों, तो हमें ज्यादा जरूरी है कि उनको हरी सब्जी खिलाना चाहिए, क्योंकि उनको आहार मिले, पौष्टिक आहार मिले। और इसके अलावा की तो मतलब हमें नुकसान भी बता सकते हैं, इसलिए हमें हरी सब्जियां देख के खानी चाहिए।
1: धन्यवाद
2: धन्यवाद।

और शाम के बातें बाता राग रंबा ओए होए बा।

से आई घर की हुलिया बदल गई, जिदना से आई घर की हुलिया बदल गई, लड़का और बिटियन का ऐसी अकल।

गई सरपंचन, गुरुआ की गली गली में बरसा दो कंचन, गुरुआ की गली गली में बरसा दो

0: नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनई बारे हमारे सब साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत हम करा देंगे। हम तो हैंगे भैया आपके संगे, आपकी रेडियो दोस्त वर्षा लेके हाजिर हैं आप सबके लाने कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी विरासत। जी हाँ श्रोताओं, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत जी दो ही चीजें अपने तय की बहुत ही ज्यादा मशहूर रहती हैंगी। और आप सब जने जानत है कि बुंदेलखंड की चर्चा हर जगह होतेगी, जब खूबसूरती की बात करी जाए या फिर विरासत की बात करी जाए या धरोहर की बात करी जाए। और ऐसे ही में अपन और क्या कर रहे थे एक कार्यक्रम के माध्यम से, जो अपने साथी केवल जिनने नाम सुनो है गो कि अरे फलानी जगह ऐसी जगह हैगी और उतर हमें जाने है गो और उतर के बारे में उन्हें कछु पतो नहीं है, तो अपन और कोशिश कर रहे थे कि एक कार्यक्रम के माध्यम से जो है उन्हें उस जगह को घुमा देवे। एक कथ है ना कि अपन सुन के और आंखें बंद करके अपन समझत के उस जगह पे पहुंच गए। और विस्तार से अगर कोई बता रहा हो उसके बारे में तो है कि नहीं। सो अपन एक कार्यक्रम से आज आपको ले चले थेंगे चंदेरी। जी हाँ साथियों, आपने चंदेरी की साड़ियां तो बहुत सुनी हुई है, लेकिन चंदेरी को ऐतिहासिक का रहस्य है गो उसके बारे में भी अपन और एक कार्यक्रम के माध्यम से जाना थेंगे। तो आप देर नहीं कर रहे थे, हम आपको ले चले थे सीधे चंदेरी। काय के पहुंचे में तना टाइम भी लगे होते, ठीक है। तो चलो अपन सैर कर भी चले थेंगे और संस्कृति के बारे में जाना थेंगे चंदेरी की, और जी के बारे में विशेष पूरी जानकारी दे रहेंगे अपने रेडियो साथी जगरूप जी।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।

पानी सुधा समान पर्वत जंगल आलीशान सुबह सुबह और मिलके न धसान जिनको पानी सुधा समान पर्वत जंगल आलीशान।

सब तुलसी भये महान। तो संत कभी दुनियन की खान, तान से निकली गूंजे तान, ये सब तुलसी।

0: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
1: वीर सिंह यादव के स्वर में अभी हमने ये लोक गीत सुना, अपनो प्यारो बुंदेलखंड, भारत माता को हृदय है। बिल्कुल मित्रों, ये गीत भी बिल्कुल बयां करता है हमारे इस बुंदेलखंड को। हमारा बुंदेलखंड, हमारा ये जो प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो हमारे भारत देश का एक मध्य स्थल है, हृदय क्षेत्र है। तो अब हम आगे बढ़ें और चलते हैं हृदय स्थली की एक ऐसी जगह पर जहां बहुत ही

0: लुभावन संस्कृति से परिपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य निहारते ही बनता है। हम बात कर रहे हैं वही चंदेरी की, तो चलते हैं चंदेरी।
1: श्रोताओ, आज हम आपको ले चलते हैं अपने बुंदेलखंड की, हालांकि ऐतिहासिक जो जानकारी आप सभी को हम अब तक पहुंचाते रहे हैं। आज प्रातः काल का वक्त है और चंदेरी जो कि ऐतिहासिक नगरी है, अपने आप में एक रमणीक जगह है जो कि देखने लायक ही है। और आज हम बस्ती से जब आए यहाँ, जागेश्वरी देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि पहाड़ पर बना हुआ है, और यहाँ पहाड़ से हम देख रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ते हुए आ गए हैं ऊपर, जो यहाँ की नगरी को देख रहे हैं तो देखते ही बन रही है। और हम चलते हैं जागेश्वरी मंदिर माता रानी के दरबार में। हमारे साथ हमारे साथी भी हैं मोहन वर्मा जी, जो कि हमारे साथ ओरछा से ही आए हैं अपनी गाड़ी से। अब हम अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर में, और अब हम मंदिर प्रांगण में आ गए हैं तो सामने ठीक खड़े हैं जहां पर शिव जी का स्थान बना हुआ है प्राचीन, और हनुमान जी महाराज की भी प्रतिमा है बगल में। देखते हैं कि यहाँ पर प्रभा देवी और काफी जो चरण सेवक हैं उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं। काफी बड़ा जो आयताकार जगह में ये स्थापित मंदिर, जगह जगह पहाड़ों को तराश करके कुछ मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि माँ जागेश्वरी देवी के मंदिर में हैं हम जो पुजारी हैं, उनसे हम थोड़ी सी जानकारी करते हैं, माता रानी के चर्चा करते हैं माता रानी जी के विषय में। आप अपने बारे में बताएं, आपका शुभ नाम।
2: हमारा नाम मनोज कुमार चौबे है, उपनाम जुग्गे महाराज है। यहाँ हमारे पूर्वज सन 1631 से हैं, और वहाँ पूर्वजों द्वारा जो ज्ञात है, यहाँ पे उस समय झांसी स्टेट रहा है यहाँ का, झांसी स्टेट का फिर ग्वालियर हुआ। यहाँ ये विंध्य मेखलाओं के बीच माँ जागेश्वरी वहाँ विराजी हुई हैं, जो हिंदुस्तान के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यह शक्तिपीठ हिंदुस्तान के जो 52 शक्तिपीठ हैं, माँ सती के अंग हैं, 52 अंग जो भगवान शिव की भार्या के इस मृत्यु लोक में अवतरित हुए हैं, उनमें से यहाँ माँ का मुख है। उसके साथ एक किंवदंती जुड़ी हुई है। उस किंवदंती में बताया जाता है कि राजा कुरुम देव हुए हैं, कुरुम शासक, और उनके समय में यहाँ प्राकट रूप है। उसकी खोज बंसीधर चौबे नाम के पंडा जी हुआ करते थे, जिन्होंने की, फिर उनको ये तीर्थ दान स्वरूप दे दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो शिवलिंग है, 2251 शिवलिंगों के साथ शिव शक्ति का संगम केंद्र है, वाणी से प्रमाणित नहीं होगा। यहाँ एक प्रतिमा है भगवान शिव की और पार्वती की, जो बाहें हाथ में डाले हुए हैं एक दूसरे के, तो ये शिव शक्ति का संगम केंद्र वह प्रतिमा प्रमाणित करती है। यहाँ 7 झरने हैं, 7 झरनों का स्वाद भिन्न है। इस तीर्थ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। माँ कन्या के रूप में दर्शन दिए हैं राजा को, और राजा को स्वप्न में प्रकाशित किया था कि माँ जागेश्वरी में प्रकट होना चाहती हूँ, मंदिर का निर्माण करवा, मंदिर का निर्माण करवा के पूर्वाभिमुख, और उसके पट 9 दिन तक नहीं खोलना है। राजा अविश्वासी हुआ करते हैं, उनके चाटुकार इतने हुआ करते हैं कि विश्वास करना सहज नहीं होता, क्योंकि कौन सत्य बोल रहा है, कौन असत्य बोल रहा है। तो राजा ने मंदिर का निर्माण तो करवाया, लेकिन पट 9 दिन की बजाय 3 दिन में खोल दिए, तो माँ का मुख निकला हुआ है।
0: अच्छा,
2: माँ के मुख के ही दर्शन होते हैं, और ये संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। यहाँ के झरनों के जल का पीछे जो कुंड बना हुआ है, बताते हैं कि ये रोगों को दूर करता है। यहाँ आने पर स्वयं प्रमाणित होता है कि ये भौगोलिक परिस्थिति से तपस्थली रही है, और ये तपस्थली स्वतः प्रमाणित करती है, जब जीवधारी यहाँ कोई भी आता है तो उसे यहाँ आने पर अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। और इस तीर्थ में

0: शक्ति के संगम केंद्र पर यहाँ भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। श्रावण मास में 22 से 51 शिवलिंगों का एक साथ अभिषेक किया जाता है और माँ का भी अभिषेक होता है। नवरात्रि में यहाँ पर काफी रस रहता है। कुमार की नवरात्र में यहाँ मेला नहीं भरता, लेकिन चैत्र की नवरात्रि में यहाँ मेला भरता है और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, चुनरी लाते हैं। जैसे लोगों की कावड़ यात्रा होती है, यहाँ पर चुनरी यात्रा होती है। जगह जगह से लोग चुनरी लाते हैं, अपनी आस्था को यहाँ माँ के पास प्रकट करते हैं। माँ के प्राकृतिक नेत्र हैं, जीवधारी जब सामने खड़ा होता है तो माँ स्वयं देखती हैं। यहाँ सामने खड़ा सन्मुख हो ही जीव मोहि जबही और जन्म कोटि अगनाचे हूँ तबही। 11 वर्ष से यहाँ रामायण चला रहा हूँ जो निरंतर गति में है, और ये तपस्थली, भजन स्थली, तंत्र स्थली, सिद्ध स्थली और शक्तिपीठ है। इतने प्रकरणों के समाहित है ये। यहाँ पर दत्तात्रेय की प्रतिमा है, जहाँ अनुसुईया जी ने कमंडल से जल छिड़क करके उनकी सतीत्व को नष्ट करने के लिए जब तीनों देवताओं को भेजा गया था, ब्रह्मा विष्णु महेश को, तब उनको बाल स्वरूप बना दिया गया था। बाल स्वरूप प्रतिमा भी यहाँ है और यहाँ पर 22 से 51 शिवलिंगों के साथ दत्तक गणेश भी है, दक्षिणावर्ती गणेश। यहाँ जितने गणपति हैं वो सब दक्षिणावर्ती हैं, सब दक्षिणावर्ती हैं। और यहाँ भक्त और श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय शांति प्राप्त की जाती है। यहाँ पर भिखारी नहीं है, कोई भी भिखारी यहाँ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर शुरू से ये नियम है कि अंदर जो पुजारी भी अटते हैं, जो अन्य तीर्थों में कल्चर है कि भक्त आया नहीं कि पुजारी से अटे, यहाँ पर इस तरीके का कोई स्वरूप नहीं है। यहाँ आने के बाद भक्त स्वतंत्र है, वो अपनी आराधना अपने हिसाब से कर सकता है, उसको कोई ना भिखारी छेड़ेगा ना पुजारी छेड़ेगा। यह विशेष पवित्रता इस तीर्थ की हमेशा से है और रहेगी।
1: आप और जो भक्त आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको यहाँ के स्थल के बारे में, कि जैसे देखते हैं कि कभी क्षतिग्रस्त भी कर देते हैं या साफ सफाई को लेके उदासीन रहते हैं कई लोग, तो उनको किस तरह से आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: यहाँ आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को समझाते हैं और साफ सफाई यहाँ हम स्वयं करते हैं, पुताई स्वयं करते हैं, रखरखाव स्वयं रखते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रशासन के या नेताओं से नहीं है। और यहाँ पर 11 वर्ष से रामायण चल रही थी, उस रामायण को यहाँ के नेताओं ने और कर्मचारियों ने मिलकर के छेड़ा था, पंडा परिवार को भी सताया गया और यहाँ पर विकास तो नहीं किया गया, अभी तो सताया जरूर गया है। व्यवस्थाओं को कभी बनाने की किसी नेता ने या कर्मचारियों ने कभी कोई कोशिश नहीं की है।
1: आप हमसे जुड़े और
0: पर्यटक आते हैं, पर्यटकों के लिए कोई शिकायत नहीं रहती, पर्यटकों का लगा भव्य स्वागत किया जाता है। बाहर से विदेशी जो पधारते हैं उनको विशेष तरीके से स्वागत किया जाता है और उनको आदर सम्मान दिया जाता है। जो भी बाहर से पर्यटक आते हैं वे यहाँ प्रफुल्लता से बाहर जाने के बाद यहाँ की तारीफ करते हैं।
1: जो हमारे देश की, हमारे भारत माता की शान और एक आदर्श है कि अतिथि देवो भव, तो उसका आप साकार करते हैं।
0: यहाँ अतिथि देवो भव को साकार करना हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े और अपनी बातचीत की हमारे साथियों के लिए, आपको पुनः नमस्कार, धन्यवाद। और मित्रों यहाँ पे काफी दर्शनार्थी भी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। आप अपने बारे में, आपको शुभ नाम क्या है दादाजी?
2: हमारा नाम रामेश्वर प्रसाद याग्निक, रिटायर्ड शिक्षक। हमने 40 साल मास्टरी करी, 20 साल मिडिल स्कूल, 20 साल हायर सेकेंडरी स्कूल, 1 साल जावरा रहे।
1: तो आप उन्हें तय के हो?
2: यही के।
1: अच्छा, तब तो आपन कैसो महसूस करत यहाँ जन्म लेख है ऐसी अच्छी तपोस्थली में, क्या कह चाह रहे यहाँ के बारे में?
2: हम जो है देवी जी की बहुत अनुकंपा है हम पे। हम बचपन से आ रहे हैं, 5 वर्ष की आयु से आ रहे हैं, देवी जी की उनकी कृपा से हमारे सब भंडार भरपूर है और हम जो है उन्हीं के आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं। हमें किसी का ना देना है ना लेना है, बस माँ का दर्शन हो जाते हैं, दिन भर चैन से कटता है।
1: आप शिक्षक हैं और हमारे जो युवा साथी हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
2: बस सब खूब धर्म के प्रति आस्था बनाए रखें, धर्म में आस्था बनाए रखें। और हमारे पंडा जी ने अखंड रामायण

0: करिए, राम भद्राचार्य जी महाराज ने चालू करी है। यहाँ पंडा जी को बहुत मेहनत करते हैं, सबको खाना खिला रहे हैं, सबको चाय पानी ना सबको।
1: रामचंद्र जी का मंदिर है।
0: हाँ, वो अच्छा। खंगारों का है। हाँ। और वो जो है किराए पे ऊपर दो मंजिल है, नीचे बहुत बढ़िया मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्तियां उसमें रामचंद्र महाराज हम देखे हैं, और बहुत बड़ा है मंदिर।
1: अच्छा।
0: हाँ, उसकी व्यवस्था जो है पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी जगह है।
1: अच्छा है।
0: हाँ, बहुत बढ़िया है।
2: तो साथियों, अभी हमने चंदेरी में जागेश्वरी मंदिर की ये विशेषता और वहाँ की बातचीत सुनी जुग्गे महाराज से, और अब वक्त हो चला है एक और गीत का। सुनते हैं एक और लोक गीत धन कुंवर की आवाज में।

साथियों, अभी हमने धनकुंवर के स्वर में ये बुंदेलखंड पर आधारित लोकगीत भी सुन लिया और अब वक्त हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से आप सभी से विदा लेने का। और मित्रों, विदा तो लेना ही है, आपकी अब वारी है, नंबर है आपका कि आप हमें फोन लगाकर बताएं कि ये जो कार्यक्रम है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, आप सभी को कैसा लगता है कार्यक्रम। मित्रों, अगर आपकी चिट्ठी या फोन आ जाते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि चलिए हम जो कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपको बेहद पसंद भी आ रहा है। तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव, फीडबैक जरूर देते रहें हमारे इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए। और हाँ, हम आपको बता दें, अगर आपकी जानकारी में अपने इस क्षेत्र में, अपने बुंदेलखंड में

चार एक सात दो छः। हम आपके फोन का या पत्र का इंतजार करेंगे। मित्रों, हम आपको बता दें कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे इसी नंबर पर और लिख सकते हैं अपने गांव का नाम, अपना नाम और कार्यक्रम के बारे में कि आपको कैसा लगा। तो बस अब अपने रेडियो साथी जगरूप को दें जाने की इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर होगी ऐसे ही मुलाकात। तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए कार्यक्रम बुंदेली किस्सा। तो आप दोस्तों सुनते ही कहानी खो लेते ही कहानी को आनंद। तो साथियों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।
1: कुवत राजन के कुंवर और एक हटे बानिया के लड़का।
2: अच्छा, मतलब एक हती राजा के कुंवर,
1: एक हती बानिया के।
2: आज दो जने हो गए,
1: दो जने हो गए।
2: हाँ।
1: अच्छी तरह से गए उनकी दोस्ती।
2: हाँ।
1: उनकी दोस्ती रहे सो अपने काम का, तो के पढ़ लिख के जो भी आ गए सुबन खो चले जावे। दो के दो शिकार भी अपने घोरो मस्के, भी अपने घोरो मस्के। अब जब वन में पहुँच गए तो जा शिकार खेली, बस शिकार खेली, खेल खाल के अपने घर पहुँच गए। अब कल को दिन बर्ती तुम्हें फिर करना।
2: अच्छा।
1: कल के दिन में भी बोले कर ले बीजन, बोले अब बीजन ने कही कि हम तो भाई ससुराल जा रहे।
2: अच्छा।
1: अब राजन को नहीं है तो पतो के हमारे ससुराल जा के थे। अब राजन को तो बस बीजन थे अपने बानिया कितना से कद बीजन।
2: अच्छा।
1: भी है बादशाह।

0: पाई खुली से जीत गए कि बाहर आराम से मिले, आराम से मिलने का चले गए तो उतरे काकस का हाथों के जोन पर लड़की राजा ने खून बियाई थी वो नदिया में स्नान कर रहे।
1: अच्छा
0: नदिया में स्नान कर रहे का करो झटपट पानी पी के मचो सचो भर के पहुंच गए। बोले कल का बोले कल ये राजन के राजा बोले कल उस तालाब में पानी ये सो ठीक है तुम लिया बोले कल महाराज जाके ना पूछो पानी पी लो तुम बोले आप तो पानी जब पिए जब जब बात पूछ ले बात है क्या क्यों पानी जो मचो लिया ऐसा जल्दी हो थे को मचो सचो भर के आ गए। बोले कल महाराज कल ऊ तालाब है वो बड़ी अजीब का लड़की सफर रही एक तो उसके साथ हमारे मूर्छा छा के गिर पड़ी तो हम तो सब मचे सचो भर लिया वो हम खुद की आसन मर जा रहे। अरे बोले कल बगरा गए सुबह पानी बगरा के तालाब पे पहुंच गए तो तालाब पे पहुंच के बाने वो कल सुधायक का बोले कल ये राजन के राजा बोले कल इसको लड़की को पूछने तो जरूरी है जब मुंह बोले कैसे
1: सही है
0: जब पीछो करें अपन ताए को और मुंह करें ताला ताए को बोले कल कहो उन्हें कही

0: राजन ने कही जाओ,
1: राजन ने कही जाओ,
0: राजन ने कही जाओ। फिर कही उनने, अब्बा बोले जल में ठाड़ी जो।
1: अच्छा,
0: अब्बा बोले
1: लड़की जो नहा रही,
0: जो नहा रही बा बोल रही है।

0: अक्का बोले कल राजन के राजा सुनो हमारी बात अभी से बोल दो ना।
1: सही है
0: अभी से बोल दो ना बोलो कब का बना दे वाले
1: बताओ
0: हैं। सही कही बोले कल नहीं अबे तो हम इससे और बोल देंगे।
1: हाँ
0: अब राजा बोल रहे
1: हैं
0: भूले मोसा।

0: अपने गली में बता दो सब काउ के द्वारे में
1: पहुँच जाए।
0: अब कहिए हाथ उठाते अगर बता दीजिए। अब वह जल के भीतर हुई, अब इनको समझ में नहीं आ रही जल के जाए। इनको बदन शरीर है कैसा, मुँह करे माए खो और पीठ करे इंताए खो कही के अब जाइए। ऐसे बताया सुनने के बाद माँ से बोली।

0: अहमदाबाद में जाओ।
1: अच्छा
0: बाने मिली ना बताई न बाने बदन काड़ो जलीर में रही।
1: अच्छा
0: अपने पर्दा भी कर रही बस साबुन में किसी गली तो पूछ ही ली गली पूछ के उनने घूरो बढ़ाओ गाँव के लाने तैयार। अब बाने सोची कि ये मुसाफर अगर पहुंचे जात तो गड़बड़ हो जाए बाने जल्दी पल्दी सफरो और सफर खूर के और बाप ने गेल चली जो ये हती से जाते भवन द्वार में सत्या को देखो तो ससरा।

अपने द्वार है उनने अब पहुंची घरे सुखी घर वाऊ को बंद। अब भाभी से बोली भी

0: भाभी ने ऊंचे कंदेला नंदी ने अच्छी करो बातन जिन बतराओ और तुम्हारी आ गए चाला
1: अब लुबग्वा आ गए तो
0: लुबग्वा तो उनने फिर भाभी से कही अरे भाभी आज नाश्ता तुम न बनाओ आज हम बनाए
1: ऐसा
0: भाभी से सुबह सुबह घरेला उतार के अपनी नाश्ता बना दी के लाने तैयारी की तैयारी करी अब इन दोनों ने कही चला
1: अच्छा
0: बोले कल देखो अपन को कगुआ गेल कुमार बना की
1: बिल्कुल
0: अब भोजन नहीं करने अब भोजन नहीं करने इसकी वाला थे
1: सही कह रहे हैं
0: अब खुला खुला थे अब नहीं खुलो हाँ तो सलाह हो रही दो जन की सलाह हो रही नाव की और राजन की सुबह सब अच्छी सुन में व्यंजन की भोजन बने भोजन बना के और अज्ञा दे गई भोजन की लाना तो दोनों जने भोजन को गए भोजन को गए साफ सूर ने चाहे एक लो चाहे खाई हुई चाहे दो खाई हुई और वहां से बना ठना ना जवाब ठोको
1: अच्छा
0: ठोकनी ठोकने ना तो भेद कैसे खोले वहां
1: सही है।

0: मिलता थी सरकार के माए कच्ची। अब अभी खुलवाओ के जई है जा।
1: हाँ, सही
0: कह रहे। जब बात जब बब्बा ने बात खोली तो बोले समझ गए। तो उनने माता की मारी सरकार के और बस सुता जा काने पर झटपट जो कछु राजन चली तो बाप बांधी और बाप नी बांधी और बस चाची मारी। कमे लग जाके कर ले काहे काहे राजन। बोले कल अभी तक क्यों आया। बोले कल महाराज मैंने अपनी टाठी धोई वो आपकी धोई तो फिर मैं आऊँ।
1: जैसे टेम लगे
0: जैसे टेम लगे। बोले कल सुन ले कल सिपता ना उन पाए वो अपन घूरो कस के तैयार हो इस पापन को मिलवा जाने। इसको मिलवा जाने तो बस बेहती सो तैयार हो गए। जहाँ से करा उनको तो उन्हें भज्जा घूरो कसो। सब रात में घूरो कस रहा सो वो ऊपर को पले चावन पीटने कस रहा।
1: अच्छा
0: क्या है जो ऊपर का पलेचा नीचे कस दिया गया। अच्छा भज्जा छोड़ चार के दोनों राम के पास है जंगल झाड़ी वाले निकल उठे। निकल के बस फेंक करी तो भाभी पूरा परोस की जनी ने दोहा बनी रेशम डोरा पाटे कोरे जले दियो रे चाटे का।

0: ठेकेदारी है वो जा तुम दिन चटकाओ और टूटे से जब जुड़े नहीं वो जुड़े सुर में गांठ पर
1: गांठ पर जाए
0: गांठ पर ये जाओ
2: हाँ।
0: तो बस ये रुकते
1: हैं नहीं गए
0: उनके ते रुक गए जो ने बपरोस की ने
1: बपरोस की ने कही जवाब
0: तो अब परोसन ने सोची कि अगर हम भोजन कराओ तो केर बेर को संग है
1: सही है
0: बेर भर में जाओ तो उनने हदीसो जैसे कच्ची पुटिया पर मुद की वही रानास में ले गए अगर भोजन में है तो ये भूख अब रात को है समझ गया ना हो तो हम भोजन में ले जाए भोजन उनमें लगा थाली को भी पहुंच तो लगा फारी जो छाजी पे चढ़ी भी तो बिस्किया पेने की भी तो वो बजो बिस्किया बजो तो उनने बिस्किया की आवाज के सुनकर मूर भूल गई बन गई और असम दोहा दे रही संत।

कामनी। अरे खोलो कान, अरे किवार है जी, उन्हें खोलो कान के बार, लेकिन उनमें नाव से कहीं कैसे बार नहीं खुल गई। अब जो जो है सुनो, साधु ने साधु ने सुनो दोहा, साधु के रामन से

0: शंख बजे से साधु जगे बम घले राजपूत, अगर इतने में के बम घर रहो और नहीं जग रहो तो कुछ कब कुछ
1: सही है का हो
0: का हो
1: कत्ते दुनिया भगत जा बेरु विश्वना का जाए।
0: अब जब इतनी बातें हो गई तो परोस में पतो होगा क्या रानी राजा के पास मिल भी गई। अब फिर की दो हाँ कह रही है।

0: लड़की लड़का से लड़की भली रे सो मेरे पे ब्याए जी। अरे ऐसी सासों का काम की है तेरी कुखन बांझई हो जाती, और ऐसे सब कुछ जाए के लड़की होती तो परोस मेरी पे ब्याह शादी कर देती।
1: तो बोलती
0: ये तो गड़िया है ना यार, सुबह पटक थार और भी भागी है। जब थार पटक के में भागी आई सुबह अपने मेरे भी रात को समझ गया कहाँ जा रहा है जो सवेरा हो सोने घोरो मस्को उस चली गई। सो ससुर साहब ने कही करी दीमान जी ऐसे नहीं चलो, हम आपकी स्वागत कर रहे हैं।

सब बात को बाहो रहो और भोजन करो, भोजन करके हम आपकी पूजा कर रहे हैं। ठीक है, जो भाई बिहती है जो डट गए, खाना खाओ, खाना खा के और पीना सुनने सजाई में विदा उनकी। कई गो में खाना पीना सब और महीना भर के लाने रखता, खाती जे घर चले गई। बस आओ अब बिहती सो, अब पीना हकावे बारे हती सो, जैसे गाँव के बारे करी तो उनमें मार जताई भक्के छोड़ के। अब खुद उनने हकाई, अब सुताई हका ले खबा जी ने हकाई, सुबह हका के वो वह सब कहीं ऐसी और चली हुई। तो शाम हो गई से एक बमूरा को पीड़ो रहे से उतरे बस गए, शाम हो गई से बस गए। बस के में अब वो लेकर ले सुनो सुता का वो लेकर ले का कल ले ही पापन को ही छोड़ जाने यही रुकता है। अब्बा सुन रही थी, बस सुन रही थी सुबह ने कही के ठीक है। सुबह सुता अक्का से कही के सुता अक्का ऑर्डर दौरा नहीं है के पति लगाओ। तो सुताई अक्का गए से तीन पात्र में लगा, एक अपन को, एक राजन को, एक रानी को। बस बेटी को ले चौबे ये तीन पात्र में कहा खुल जाओ। बोले कल एक आपको, एक हमको, एक रानी को। अरे बोले कल रानी की फार के फिर जमा सुरानी की फार के मार फिर गई। अब बस पात्र लग के आई तो खाना खाओ, खाना खा के पड़ी पड़ी सोई। अब रानी ने सोची कि ये भगत तो हमें छोड़ के ही हैं, इसे का करें। जब ये सुबह घोड़े की पछाई की एड़ रखी, एड़ बजत बात बटोर बनी थी, सुबह छोड़ के बाने पीने से मार लाए बटोर कि ये भगे तो जब एड़ चुनते समय यहाँ का अगर हम सो गए आँख खुल जाए तो हम इसे कचू किया ले। सुबह सुनने के सुबह घोड़ो भंसाई रात भाई को बड़ा सुबह तनो वो तनी बटूर कहीं दूर सो नेक चावा को ठोको घोड़ी में सुबह दूर पीती। सो उनने कही रानी ने।

ना दृष्टि थर में बुझा गई हमें, हम ना जय गांव के रहे ना बई गांव के रहे, अब इस निर्वारे के चले गए, भी अपने भवन को चले गए। और रानी ने अति सुबह पीनसखू वे घर वाले और बाने हकाओ हकाओ को रानी को गाड़ी हकाऊ थी पीनसखू हकाऊ थे रानी तो हका जो वैद्या से कचुवती तो राजा गिलंड की बाग में जा रहा जा रही सुवन ने भज्जा घर वाले ना के टूटे माई की बोलनिया टूटी रानी वो तो मालिन है मालिन गोली गोली कर लेगा अरे कौन कहा की पाप नारे कहती है तूने एक मोर रानी ने वो मालिन को भीतर बीरा दे जाए अभी तो राजन की बेटी थी उससे कछु मोरन को कछु टूटो तो नहीं हकी भी तो बस अपने इंतजाम में अपनी कुठज्जा में उन्हें दुकान रहे कहाँ रहे सही ऐसे ही कछु बिलादना हो गए दुकान दुकान तो एक दिन आओ अब उनकी बेटी हती राजन की यानी जमदीव नाव तो का नाव तो बेटी को जमती जमती नाव तो बेटी को सो बिन बे फूलन की तुला तो लगती हुआ सुबह मालन रोजीना डाली लगा दे और फूलन को ले जावे सो राजन ने हकी सोची के अब मालन तो इतने आओ तो हम आज बगीचा घूमने आए सो बगीचा घूमन गए भी सोचे बाद राजन की लड़की रह गए सो राजन ने सोची कि ये तो काछी माछी की तो या है नहीं है तो कहो राजा की लड़की सुबह जैसे कैसे अपने

0: எதிர்காய் பார்க்குறாங்க. சுத்தி தீர்த்தாக்கள் மஞ்சூர் எங்க இயக்கக்கூடிய ராஜா ஹேசக்கு புலக்கேசன் புள்ளிக்கல்ல மகாஜூத்தன் இங்க மஞ்சூர் சஞ்சீவித்தது ராஜா பல் புள்ளிக்கல்ல ஜப்பல் உள்ள பகல்யா புள்ளிக்கல்ல ஆராய் சொல்லும் அப்படியே மேல கழிச்சி போ பீஜா ஓ பீஜா கொஞ்சம் வாசல பூரோ ஏக்கா தோ மில் ரீ தோ மில் ரீ लेकिन भाई फिर उनकी सलाह तो बहत गई कि अगर तुमसे राजा बात करे तो हम उड़ काट ले हमसे करेगा तुम काट लो तो भी राजा काऊ समाप्त न कर गए चुपचाप बैठे रहे दरबार में भगियां एक दिन आ तो बनी मेरे को खिड़की आके पहुंचे गए तो राजा ने कही बोले कल ले कवि साहब कहाँ के रहने वाले हो कैसे हो बोले कल ले के दीखी फिर वह लड़की की शादी करी उन्होंने उनकी रानी ने हती बात से
1: देखो दोस्तों जातो अपन सब जन ने किस्सा सुनी है यानी कि कहानी खो सुनी है और एक किस्सा को आनंद लाओ अब एक के संगे संगे अपने दोस्त माता दिन को हो रहा आज के कार्यक्रम से जावे को समय तो अपने दोस्त को दो ये कार्यक्रम से जावे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात कार्यक्रम में एक बेरा पे जब तक के लाने नमस्कार।

अकेले अपन खाजी बताहे अपने जीवन की सभी बातें और सभी अनुभव, तो सुनो जी काकेरे।

0: करें। और भैया आज हम आप सब जन के लाने एक बहुत ही नौ सौ कार्यक्रम लेके आए हैं। जी को भैया आप सुनो और सबई पंच सुने। और भैया ये कार्यक्रम को नाम है सुनो जी का कह रहे। तो आज अपन बुजुर्ग दादा भैयन की बातें करें और सुने। और एक क्रम में राम गोपाल दादा हैं, अपन इनसे बात करें और जी अपन को कुछ बताएं। लेकिन ई के पहले अपन सुनत हैं एक बहुत ही नौने से गीत को। जी को भैया गाँव है रजनीश दुबे ने। और देखो ऐसे शब्द कहे इनने इसमें के आप इन शब्दन से गीत में इनने समझाओ है का कही। दरस राम के पाके और हो वे धन्य भाग जहाँ के। अगर दर्शन अपन भगवान राम के पाले हैं तो अपने धन्य भाग हैं। और भैया तो ये गीत को सुनो, आप सुनो सबई पंच भैया।
1: दरस राम के पाके

0: हाँ तो भैया अबे सुनो, अपन सब जन ने जो गीत और रजनीश दुबे जी ने कितने अच्छे नौनी तरीके से अपन का गाओ के सुन बताओ है, और अपन सब जन ने सुनो है। अब अपन बात करते हैं राम गोपाल कुशवाहा जी से।
1: दादा राम राम।
2: राम राम।
1: अपना दादा नाव का है?
2: राम गोपाल।
1: तो दादा अपनी उम्र कितनी है आप?
2: हमारी उम्र 70 है।
1: अपन कहाँ के रहे विवाह हो दादा?
2: केना के पूर्व पटो ग्राम केना जिला टीकमगढ़ तहसील निवाड़ी मध्य प्रदेश।
1: तो अबे आप दादा कहाँ करे थे?
2: ये हल्को हल्को काम कर रहे अपने दो बच्चे देश ने अलग।
1: और
2: वर्कर हम कहा बस किए काम वाम हम कहते नहीं।
1: आप अपने परिवार वाहन से का के वो चाहते हो?
2: परिवार वाहन से का कहते विचार को जब से तो जैसी समस्या है तो अपने भगत रहे।
1: आप जो बता रहा था कि बुढ़ापे में अपन का कौन कौन सी दिक्कतें आने लगा?

0: का परेशानी देखते आओ आती है अपन का
1: तो देखो ना खाना मुड़ा एक बात देखो घाम लगा काम दौड़ नहीं पाओ नहीं पाओ घूरे फिरा हर एक बात की नेक में मतलब नेक में मुश्किल दिखा दो अगली बार
0: और वैसे वह समस्या है अपनी
1: अब वह समस्या जो बाल बच्चे खा रहा है हमें नहीं आया हम खा रहे
0: अपने मोड़ी मोड़ा अपने पास बैठ पे जाओ
1: आओ बैठ जाओ जी नहीं आओ थे तू सच में
0: अच्छा
1: अस्पताल जाने
0: हैं और अपने सेवा खुशामद के बारे में आपका क्या सर
1: सेवा खुशामद सब करा थे जनाब जी बैठे अब ठीक नहीं है चला फ्री कर लेंगे
0: दिक्कतें हैं उनको अपन कैसे झेल सकता का कर सकता
1: आप झेल सकते तो बैठ वो है सीधी बात है पैसा जो खर्च तो ठीक है अरे कछु नहीं कछु नहीं तो 10-15 उसको तो खर्च है आदमी को वहाँ मान के चलो कछु न कछु वो 10 उठा के चल जाते हैं
0: दिन भर आपको कैसे कटा था
1: दो बच्चे उनका दिमाग लगा ले सुझारे सुझारे अपने छाने में चल बस
0: अच्छा और अबे तो आपका दिक्कत दिखावे की तो दिक्कत कछु है नहीं आया थी जैसे का आप बुढ़ापे की
1: बुढ़ापे मतलब
0: दिक्कतें आदमी का
1: दिक्कत तो देखे कि नहीं होती नहीं है तुम है जो कागज है जो जो जो नहीं बांस पा रहे हम मतलब और उसी हम दिखा कागज नहीं बांस पाऊ मुझे दिखा सक रहे
0: और अच्छा ऐसी कौन अपनी परेशानी है जो आप ना कह सका तो खावे पीवे की आपकी का
1: खावे पीवे कौन कभी नहीं आ रहा जो भाई में है तो
0: अच्छा अपने माता पिता की सेवा में और बेटी में का अंतर है
1: चलो इज्जत रहती समय अनुसार इज्जत रहती इज्जत नहीं आया और पापा जाना फैली अरे पापा ही जाना फैली मतलब अपनी अपनी हो चाह रहा हूँ आदमी हमारे वाले बच्चों जो चीज मिल जाए हमारे मिल जाए दूसरे की जठानी न मिले दीवानी न मिले भाई ऐसी समस्या है मतलब अभी के समय में
0: तो अपन का के वो चाहते कि कैसे हो चाहिए अबे के सब का
1: जब जो हो चाहिए शांति हो चाहिए प्रेम हो चाहिए सब में बड़ा प्रेम प्रेम है तो उसे कबू आपत्ति नहीं आए प्रेम है तो सब मतलब आपत्ति न आए उसे शांति है शांति से मतलब हरी सुविधाएं कबू आपत्ति न आए
0: अच्छा जो आपने प्रेम की बात कही तो ये प्रेम में और काका छिपो अगर प्रेम ले तो काका अच्छा हो सका
1: प्रेम जो अपने मतलब ईमानदारी काम प्रेम में उबर का जो काम नहीं कर प्रेम मतलब जीव अजीव काम प्रेम
0: लड़ाई झगड़ा ना उज्जे पैसा टका खर्च ना उज्जे
1: हाँ घरे पैसा रे मतलब जो मतलब लड़ाई झगड़ा वो काम
0: तो अपनो काके वो है रेडियो में जो भी आप सुने आदमी कैसे अपने बाप मताई की सेवा करें चाची और कैसे रहें चाची आपका कंचाऊ सब जनन से आपको काके वो है
1: बात तो बात खूब बड़ी है मतलब ऐसे बाप मताई की सेवा करें
0: तो वही बात तो बड़ी बात मतलब शुरू से आप
1: बताओ यात्रा ना कछु
0: हाँ यही बात आप यही बात पूछना चाहूंगा शुरू से बता दो आप आप काके वो चाहते
1: जो अपने बाप मताई को माने उसे भगवान को माने सब इज्जत ले प्रेम ले लक्ष्मी जी ले सब मतलब नहीं के ऊपर है बाप मताई को ठुकराओ तो तुम्हारे बाल बच्चे ठुकरा मतलब आगे चली जाइए तो मतलब
0: अबे आप तीर्थ यात्रा की बात कर रहे थे
1: तीर्थ यात्रा मतलब जैसे पैसा है देने बाल बच्चे चले जाए तीर्थ यात्रा हुआ अब पैसे नहीं तो जाकर है हाँ जो मतलब है जब तो चले जाओ ये पैसे आगे चले जाए अब जैसे पैसे ही नहीं जाते तो कहाँ जा रहा है रोटी नहीं खा पा रहा है आँख से कमजोरी हो गई पैसा खर्च को मिल नहीं रहा है टेंशन बन जाए तो अच्छी बात है
0: और का के वो चाहू था
1: जी चाहू के आराम चाहू बस मिल जावे टेंशन बन जावे तो पैसा खर्च को जाओ गए लड़का वाले अपने बाल बच्चे को समान खाने दिए 3-4 महीना मिलक गए तो अपने उम्र खाद चलाते
0: ठीक है दादा जब आपने अच्छी जानकारी दी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो देखो भैया अबे अपन खान ने बुढ़ापे की सारी बातें बताई हैं कि ई बुढ़ापे में कौन कौन सी दिक्कतें हैं का परेशानी है और अपनो जीवन ई उतरती अवस्था में कैसे कट रहो है और एक बात और इनने अच्छे तरीके से बताई है कि अगर पैसा होते तो हम घूम लेते कोनो आमदनी हो जाए या को हमें पैसा दे रखे चारो धाम कर है और भैया ये तो बातें अपनी अबे हतीसो सब जन ने सुनी ही है लेकिन आप लोग जा भी कह रहे उन्हों को भैया बिल्कुल बात नहीं मैं बताएं तो अपन और सुनत है एक गीत खो और ये गाँव है भैया वंदना अहरवाल ने और इनने देखो इस शब्द में काका गौवा के गोबर मंगाओ यानी गऊ के गोबर मंगा के जी अपने और चौक पुरा रही हैं और शुभ संदेश की बातें कर रही हैं और संदेश दे रही हैं तो भैया अपन सुनो सवई पंच भैया।

भैया अपन और सुनत है एक गीत को, जी को गा रहे हैं उमा शंकर नामदेव, और जिनके बोल हैं सब देवन में सबसे पहले प्रथम पूज मनाएं। तो भैया आप सुनो और सभी पंच भैया सो सुने।

हाँ तो भैया अबे सुन रहे थे जो कार्यक्रम सुनो जी का केर है। ये कार्यक्रम में आप सब जने जानते ही हैं कि हर रविवार को बूढ़े पुराने दादन की बातन को सुनत हैं, जिनने अपनी बातें बताई हैं कितने अच्छे तरीके से अपनी बातें बताई हैं, और ऐसा ही हम हर रविवार को लेके आओ थे ये कार्यक्रम को सुनो जी का केर है। अगर आप और अपने दादा पिताजी की अच्छी देखभाल करत हो तो हमें जरूर बता।

गए दादा अपने सुख दुख की बातें करें चाहू थे तो हमें सो बतावे भैया हमारे पते और फोन नंबर पे। और देखो बतावे की लाने लिख लो भैया हमारा पतो और फोन नंबर। तो भैया हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम और छतगेला के पास ओरछा। अब ई बातन के संगे संगे अपने दोस्त काशीराम को होत है समय कार्यक्रम से। तो भैया देव आज्ञा और यही कार्यक्रम में फिर से अपनी मुलाकात हुई, तब तक के लाने आज्ञा दो अपने भैया काशीराम को। तो नमस्कार।

आकेरे अपन खाजी बताएं अपने जीवन की सभी बातें और सभी अनुभव। तो सुनो जी काकेरे।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप आ गए इसी वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और साथियों, हम लेके आ गए आपके लाने जो प्यार हो तो कार्यक्रम मेरी बुंदेली मेरे गीत। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।
1: हेलो
2: सर, नमस्ते।
1: नमस्कार नमस्कार भैया, को बोल रहे
2: हैं? दीनदयाल बोल रहे सर।
1: हाँ दीनदयाल भैया, कैसे हैं?
2: सर बढ़िया है।
1: बिल्कुल दीनदयाल भैया, आपको मेरी बुंदेली मेरे गीत में बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
2: सर सुनवा लीजिए, वो गीत है ऊंचे पहाड़ में से मैया बैठी रतनगढ़ वाली।
1: ऊंचे पहाड़ पे बैठी मैया रतनगढ़ वाली।
2: हाँ जी सर।
1: चलो भैया दीनदयाल भैया, हम आपको जरूर सुनवाए हैं जो गीत। और कहा हो रहा अपनो?
2: बस बढ़िया है सर, पानी वानी लगा रहे खेत में।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप ऐसे फोन लगा उतरा बुक करें।
2: ठीक है सर।
1: नमस्कार भैया।
2: नमस्कार नमस्कार सर।

0: हेलो,
1: नमस्कार नमस्कार महेश भाई, कैसे हैं?
0: बढ़िया है सर, बढ़िया है भैया। सब आप लोगों के पाए, ऊपर वाले की कृपा है, और सब बहुने वाले हो गई, पानी आने लग रहा हो।
1: चलो बहुत अच्छी बात है। तो मेरी बुंदली मेरे गीत में कौन सा गीत सुने हो?
0: आज हम गीत सुने प्रियंका किशोरी और छोटे राजा,
1: प्रियंका बुलबुल जी की आवाज में।
0: हाँ
1: चलो ठीक है। अच्छा गीत के बोल बता पाए आप?
0: एक गीत कोई गाओ सुनवा दीजिए थोड़ा।
1: अच्छा,
0: बोल, बोल तो हाँ बोल याद नहीं आ रहा है।
1: चलो ठीक है, हम उनकी आवाज में आपको गीत जरूर सुनवाए।
0: ठीक है भैया, जय राम जी की।
1: जय श्री राम, जय श्री राम।

भगवान शंकर की बारात पहुंच गई महाराज हिमांचल के। जब सर्पों का श्रृंगार हुआ भगवान शिव का तो वहां देखो एक उपाय।

नादिया भागा, भगवान शिव का सब परिवार बिखर गया तो एंड में क्या होता है? बिखर गया परिवार, बात जा बनी बनाई में, और सक जाने तिपुरारे अपनी हवा हवाई में।

0: अंशन बन गया। कहना है
1: मांग लाल है बिंदिया भाल है कंगना कलाई में और चंद छबी मुख चंद विराज गोरा माई में।

0: गुंडल खान नंबर 10 नंबर 4 है।
1: बिल्कुल भैया बिल्कुल, मेरी बुंदेली मेरे गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
0: हमें सर वो सुनवा दीजिए, कचरिया जी को भाव ब्याह। हम अपने गांव जुगियाई से बोल रहे हैं, सतीश साहू।
1: जुगियाई से सतीश साहू जी?
0: जी हाँ सर।
1: बिल्कुल सतीश भैया, आपको जरूर सुनवा है जो गीत है।
0: हाँ सर, और सब बढ़िया है सर?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बढ़िया है।
0: हाँ सर, सब राम राजा की कृपा है, आप लोगों की सब बढ़िया है।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे रेडियो बुंदेलखंड सुना तो हम आपकी फरमाइश जरूर सुनवाए हैं।

0: माता जी भैया को नमस्कार है।
1: नमस्कार नमस्कार, कहाँ से?
0: मैं बाबू यादव सारनाथ वाराणसी से भैया।
1: बिल्कुल बाबू भैया जी, मेरी बुंदेली मेरे गीत में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
0: हमें से वो वाला भजन सुनवा दीजिए।
1: कौन सा?

0: आते मन से जो कोई प्राणी नगर ओरछा आवे
1: जी
0: वही वाला सुना दीजिए।
1: चलो ठीक है बाबू भैया, हम आपको जो गीत जरूर सुनवाते हैं।
0: धन्यवाद भैया आपका।
1: बिल्कुल आप ऐसे सुन कराओगे जो बुंदेलखंड। ठीक
0: ठीक है।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

साथियों, अगर आप भी सुनना चाहते हैं ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को। साथियों, हमारा नंबर है 94-25-14-17-26। बिल्कुल साथियों, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को, तो सुनिए ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।

0: दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

कबूल कबूल करते हैं भोरा बसत मेघ नचत है मोरा ओ बसत मेघ नचत है

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं वीर अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। अब दोस्तों समय हो गया है अपने अगले कार्यक्रम हेलो फरमाइश को। सो हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आप सब जन को स्वागत है और इमें सुने अपन फरमाइशी की तनखो। सो आप फ़ोन लगाएं हमारे नंबर पे, हमारा नंबर है 92 19 20 77 49। जो नंबर पे फ़ोन लगा के आप अपने पसंद की फरमाइश सुन सकते हैं। तो एक क्रम में अपने श्रोता साथियों के फोन भी देखो आवो शुरू हो गए हैं। सो अपन उनसे जानते हैं कि भी कहाँ से बोल रहे को बोल रहे। हेलो
1: हेलो
0: जी भैया, कहाँ से?
1: अभी आ योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी योगेश जी, कैसे हैं?
1: बढ़िया है। अच्छा
0: चलो, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया ही रहना चाहिए
1: जी।
0: और आज कौन सा गीत सुनेंगे अपन हेलो फरमाइश में?
1: गीत आप हमें फिल्म मोहब्बतें से सुनवा देंगे
0: जी।
1: गीत के बोल रहेंगे हमको हमी से चुरा लो।
0: अच्छा
1: जी
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हेलो
0: जी जी
1: हाँ जी भैया
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल जरूर आपको जो गीत सुनवाए हैं। और काहू अपना
1: ठीक है? अभी अभी तो काफी तेज धूप करने लग गया है 2-3 दिनों से। जी
0: चलो ठीक है
1: जी
0: तो अपन गीत की ओर चलें का
1: जी जी

बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो।
1: आदरणीय मातादिन भैया सादर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। कहाँ से?
1: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोवर्धन रोड मथुरा से बुंदेलखंड ओरछा से मातादिन भैया से वार्तालाप कर रहा हूँ। भैया जी आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल बढ़िया है शारदा जी, आप कैसे हैं? और
1: मैं तो बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। बुंदेलखंड ओरछा सुन रहा हूँ और आपसे वार्तालाप करने के लिए लालायित था और अभी अभी मेरी कॉल लगी और आपसे वार्तालाप करके काफी बेहद सुखद अनुभूत कर रहा हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही सुखद अनुभव की ओर बढ़ते रहें आप।
1: भैया जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि
0: जी
1: जब मेरी रिंग जाती है तो कम से कम आप अटेंड कर लिया करिए। 4 बार रिंग गई, 5वें बार में आपने उठाया है तो
0: जी जी
1: उसको उठा के होल्ड पे डाल दीजिए, जैसे मनीष भैया और वर्षा
0: जी
1: दीदी करते
0: जी
1: हैं
0: जी
1: कि जब कॉल जाती है तो तुरंत उठा लेते हैं और उसको होल्ड पे डाल के, और जब गाना खत्म होने को होता है तो वार्तालाप शुरू कर देते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: और
0: चलिए,
1: ऐसे में
0: बहुत
1: क्या है, रिंग
0: बढ़िया।
1: पे रिंग जाती रहती है ना, तो
0: हाँ
1: हमें लगता है कि यार मेरा रिंग जो है बढ़ती जा रही है। इसी
0: अच्छा,
1: बीच कोई दूसरा श्रोता आ जाता है तो फिर अपने को अखरता है कि यार देखो 3 बार रिंग गई, अभी चौथी बार में किसी अन्य श्रोता की गई तो उसको अटेंड हो गया।
0: चलो, और सब बढ़िया है? पता कौन सो की सुनने पर हूँ शारदा जी।
1: जी मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसे हैं
0: बिल्कुल बढ़िया है, मस्त
1: और वहां का मौसम?
0: मौसम। आज धूप निकली,
1: हाँ हमारे यहाँ भी आज धूप
0: आज
1: निकली
0: धूप
1: है, कल
0: निकली।
1: बारिश हुई थी।
0: हाँ
1: आपको रेडियो वर्षा परिवार, रेडियो बुंदेलखंड वर्षा परिवार को और सभी श्रोताओं को कृष्ण जन्माष्टमी और नंदोत्सव जो वर्तमान में जारी है
0: जी,
1: उसकी बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी।
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है छोटी बहू
0: जी
1: और गीत के बोल है तेरे कन्हैया तो किसको कहेगा रे मैया,
0: कश्मीर का
1: तेरे
0: गाना।
1: कन्हैया, ये गीत सुना दीजिए बुंदेलखंड ओरछा पर।
0: बिल्कुल
1: जी शामिल करता हूँ आदरणीय माता दिन भैया मनीष जी की वर्षा जी को, बुंदेलखंड ओरछा परिवार को और ब्रज रेडियो श्रोता मित्र परिवार है। लोकेन वर्मा जी है, राजू लवानिया है, राजू यादव है, अविनाश जी, आशुतोष जी, टेक्स रघुवाल, सतीश रघुवंशी, इन सभी श्रोताओं के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत रेडियो बुंदेलखंड ओरछा को सुन रहे सभी श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ।
0: जी, मेरे कन्हैया
1: हे रे कन्हैया तू किसको कहेगा रे मैया,
0: मैया, हेरे कन्हैया।
1: हाँ हे रे कन्हैया होगा या ओ रे
0: अच्छा,
1: कन्हैया,
0: गा के बताएं तो जरा। अच्छा, आनंद आ जाएगा।
1: हे

0: एक ने तुझको जन्म दिया है, एक
1: पाला।
0: ने तुझको पाला
1: हाँ रे कन्हैया, सही बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो कितना आनंद
0: तेरे।
1: लागो।
0: हाँ ये तो
1: हाँ
0: इसीलिए तो हमने कहा अभी नंद उत्सव चल रहा है, ये नंद उत्सव के अवसर पर ये प्यारा सा गीत बड़ा अच्छा लगेगा। दे
1: चलो ठीक है, तो गीत को सुनिए मन।
0: धन्यवाद, आपका दिन मंगल भाई हो। नमस्कार।
1: बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी भैया, कहाँ से?
1: जी, नमस्कार आदरणीय आरजे माता दीन भैया जी को मेरा प्यार भरा प्रणाम प्रणाम प्रणाम।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी।
1: जी भैया, मैं राजू यादव, ग्राम उपरिका श्री रामपुर डेरा सरीला राठ मुस्करा, हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। इस समय मैं राठ में हूँ।
0: अच्छा, तो सब ठीक? कुशल मंगल है राजू भैया?
1: तो कुशल मंगलमय है भैया, बहू को आए थे थोड़ा अस्पताल दिखवाने के लिए,
0: जी
1: और हमने सोचा जब तक हम कार्यक्रम में भी भाग ले लेते हैं तो
0: बिल्कुल
1: कार्यक्रम में शामिल भी हो चुके हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया किया आपने जी।
1: जी
0: तो आज गीत कौन सा सुनेंगे अपन?
1: सर जी, कोई भी गीत सुना दीजिए, हमें तो सारे गीत पसंद है, कोई भी गीत सुना दीजिए तो अच्छा रहेगा।
0: अच्छा
1: ओके,
0: चलो ठीक है, तो अपन सुनते हैं श्याम तेरी बंसी पुकारी।
1: कुछ मित्रों को भी याद
0: आप
1: करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल जरूर, देखो कितनी
1: हेलो
0: बढ़िया
1: धर्मराइस एकता ग्रुप के श्री गौतम राय भोली जी हैं, लोकिन वर्मा जी हैं, साहिर नूर अंसारी जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, प्रेमदास बाबा जी हैं, दिनकर जी हैं, आदरणीय है सादा प्रसाद मथुरा वृंदावन से हैं, फूलचंद पाल जी हैं, राजेंद्र गंगवार जी हैं, सतीश रघुवंशी जी हैं, दिलीप आहूजा जी हैं, प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, मारुति भोसले जी हैं, गंगाधर सावनकर जी हैं, गजराज सिंह लोधी जी हैं, सचिन चंसौलिया जी हैं, जयपाल भैया जी हैं, परवेज अहमद जी हैं, बलवान सिंह यादव जी हैं, अनूप कुमार यादव जी, बेटा सिंह यादव जी, और हमारे इस समय जितने भी कार्यक्रम बुंदेलखंड ओरछा सुन रहे हैं
0: जी।
1: सभी को इसी गीत में शामिल करें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: प्रणाम सर जी।
0: प्रणाम।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी भैया, कहाँ से?
1: नमस्ते सर जी, मैं महाराष्ट्र हिंगोली जिला कळमनुरी तालुका मोहन सिंह ठाकुर बात कर रहे सर जी।
0: जी मोहन जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बहुत बढ़िया है सर जी। खेत में बैठे थे, हमारे भैंसा चल रहे उधर, तो यहाँ छाव के ने बैठे, लीम का झाड़ है, पेड़ है, तो उनके करें उसके किनारे को बैठे छाव को। हाँ
0: अच्छा, छाया में बैठे आप?
1: जी हाँ, धूप लग रही है ना, वैसे
0: हाँ
1: गर्मी हो रही है, धूप लग रही है, तो मजे ले रहे हैं अभी ये छाव का।
0: सही बात है, गर्मी पड़ रही।
1: हाँ जी
0: तो
1: हाँ
0: पानी कितने दिन से नहीं बरसा आपके यहाँ?
1: सर जी, 20 दिन तो करेक्ट हो गए हैं,
0: अच्छा,
1: 20-25। हाँ बिल्कुल, एक छीटा नहीं है। जैसे हमारे
0: हाँ
1: सोयाबीन, हल्दी, तुअर, कपास, गन्ना, उनको आप पानी देने को आया है तो क्या करेंगे। जिनके पास बोर है, बावड़ी है, तो वो दे
0: जी
1: दे रहे हैं, जिनके पास
0: जी
1: कुछ ही नहीं है तो बस
0: भी नहीं दे पा रहे, सूख रही उनकी
1: बस।
0: फसल।
1: हाँ सर जी,
0: चलो ठीक, तो आज कौन सा गीत सुनेंगे अपन?
1: राज बब्बर पर चित्र गीत हुआ है, महेंद्र कपूर की आवाज है, और गीत है बीते हुए लम्हों की कसक तो होगी। हाँ जी, बीते हुए लम्हों की कसक तो निकलती होंगी, ऐसा कुछ तो भी गीत है, महेंद्र कपूर की आवाज है, राज बब्बर पर चित्र गीत हुआ है। वो
0: बिल्कुल, तो अपन
1: सुनना चाहते सर जी।
0: चलो ठीक है, अपन वही गीत सुने। ठीक,
1: थैंक यू, धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार।

0: हेलो।
1: भाई साहब
0: जय सियाराम, जय सियाराम भैया। कहाँ से?
1: भैया
0: राजेश यादव जी, कैसे हैं राजेश जी?
1: बढ़िया है भैया। बारिश नहीं रुक रही, बारिश
0: हाँ?
1: नहीं रुक रही, बारिश हो रही प्रतिदिन।
0: अच्छा।
1: हाँ नुकसान तो है मूंगफली का।
0: आज तो नहीं भाई बारिश?
1: आज सुबह थोड़ी थोड़ी हो रही, लेकिन कभी खुद
0: हाँ
1: है खुल जाती लगता है।
0: चलो ठीक है। तो और का हो रहा?
1: और दुकान ही बैठे थे, नहीं कर ले भैया से बात।
0: चलो बिल्कुल, बहुत अच्छा करो आपने, फोन लगा लो। तो बताओ कौन से गीत सुने हो आज?
1: आज सुनवा दो, सुनवा दो जो है किया जानवर
0: है?
1: फिल्म को नहीं अक्षय कुमार वाली,
0: कौन सा?
1: उसको ना देखूं तो दिल को मुझे ऐसा ही बनना।
0: तुझको ना देखूं तो दिल में चैन आता है।
1: हाँ भैया। हाँ भैया
0: और का हो रहा?
1: सब बढ़िया है, मतलब लिए अच्छा
0: हाँ
1: जी नहीं आए, नहीं सही नहीं आए लोग।
0: आ रहे भी लोग। हाँ
1: लाइक नहीं है।
0: और का मन में है लगे हुए, और काम है उनके पास। चलो ठीक है राजेश भैया। है
1: हाँ भैया, मैं
0: राम राम राम राम।

0: हेलो।
1: जी नमस्ते सर
0: नमस्ते जी। नमस्ते, कहाँ से?
1: जी। संतोष कुमार राव बात कर रहे सर, उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: संतोष जी उमरिया से।
1: जी सर,
0: जी कैसे हैं संतोष जी?
1: बहुत अच्छा सर, आपका कार्यक्रम उठा रहे थे, कार्यक्रम का आनंद उठा रहे थे और आपको कॉल भी लगा रहे थे सर। बड़ी देर के बाद कॉल लगा तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सर
0: जी
1: हमें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो आज गीत कौन सा सुनेंगे अपन?
1: आज आप मुझे सुनवा दीजिएगा, मूवी का नाम रहेगा बिक्की डोनर
0: जी
1: और गाने के बोले हैं सर पानीदार रंग।
0: पानीदार रंग।
1: जी सर, पानीदार
0: जी
1: रंग देख के मेरी अखियां चुहन चूरो लगे, ऐसा करके सॉन्ग है
0: अच्छा,
1: सर।
0: चलो ठीक है। और सब बढ़िया है?
1: और बिल्कुल सर, भगवान की दया कृपा बनी है सर, और आपके कार्यक्रमों से बिल्कुल लाभान्वित होते हैं सभी।
0: जी
1: कार्यक्रम सुनकर हमारे परिवार के सभी लोग इस समय आपके कार्यक्रम सुनकर के मन को आनंदित उठा रहे हैं सर।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और वर्षा जी कहाँ है? उनको भी हमारी तरफ से नमस्कार रहेगा। उनके द्वारा भी कार्यक्रम बहुत ही अच्छा प्रस्तुत किया जाता है सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अभी वे दूसरे कामन में व्यस्त हैं थोड़े।
1: जी सर, जी
0: ठीक है,
1: जी जी
0: चलो ठीक है, तो अब गीत की ओर चलिए।
1: जी सर, बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतना अच्छा कार्यक्रम देने के लिए।
0: धन्यवाद, धन्यवाद आपको भी।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी भैया, कहाँ से? अरे
1: अनूप कुमार, ग्राम उपरेखा, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से बात कर रहा हूँ सर। नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार अनूप जी, नमस्कार। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है।
0: और का चल रहा अपने ते?
1: अपने तो कछु नहीं, बैठी है ऐसी
0: अच्छा, बैठे
1: टाइम
0: हैं।
1: पास। हाँ,
0: तो अपने तक खेती कहाँ होत? खेती होत के कुछ व्यवसाय करत?
1: खेती हो थी
0: अच्छा, खेती होत, खेती में काब वो अपनो?
1: पूली है, मूंगफली है और हल्दी है। जी
0: अच्छा, ये चीजें लगाए आप,
1: जी
0: चलो बहुत अच्छी बात है। और आज गीत कौन सा सुने अपन?
1: सी तेरी बोली।
0: कोयल सी तेरी बोली।
1: हाँ,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कहाँ हो रहा?
1: अब कछु नहीं सार बैठी हैं
0: हाँ
1: पर ये नीम की छाव में, तो
0: हाँ
1: हमने कहा बात कर लिया
0: हाँ
1: है। राजू भाई साहब ने बताया,
0: अच्छा,
1: हाँ तो
0: हाँ
1: हमने लगा लिया फोन।
0: क्या बात है। तो राजू भैया ने कही थी कि आप फोन लगा ले करे।
1: हाँ
0: चलो बढ़िया है। अब गीत सुनिए अपन।
1: हाँ गीत
0: चलो
1: बोलो।
0: ठीक, नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार।

0: प्रोग्राम में आप भी
1: हेलो
0: मैं गुजरात भावनगर से अफजल बात कर रहा हूँ
1: जी। अफजल जी कैसे हैं आप?
0: बस एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और बुंदेलखंड लाइव फोनिंग प्रोग्राम से जुड़ गया हूँ। आज बहुत दिनों बाद खास कह सकते हैं कि बुंदेलखंड लाइव फोनिंग प्रोग्राम से जुड़ा हूँ, तो काफी कह सकते हैं कि स्माइल बढ़ गई है।
1: जी जी बिल्कुल, जरूर बढ़ना चाहिए स्माइल। देखो
0: क्योंकि एक दूसरे की आवाज एक दूसरे तक पहुंचती है तो हमारी एनर्जी भी बढ़ जाती है, और खासतौर पर हमारी आवाज हम रेडियो के माध्यम से सुने तो वो मजा ही अलग है।
1: बिल्कुल सही बात है कि अगर आपकी आवाज आप तक रेडियो के माध्यम से जा रही तो बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, अभी तो क्या है कि कह सकते हैं कि अभी सब ऑनलाइन मोबाइल से हो गया था, मगर एक वक्त था जब मेरे पापा जब फोनी प्रोग्राम में भाग लेते थे तो उसके जो दोस्त थे
1: जी
0: वो एचडीपीसी हो जाते थे, और जो जितने भी उनके जो दोस्त होते थे खास तौर पर तो उनको फोन करके इस तरह से कहते थे कि भाई आज मेरा कॉल अहमदाबाद में लगा है तो आप खास तौर पर सुनना। तो पहले लैंडलाइन एचडी

0: ये जमाना था तो लोग साइकिल पे एक दूसरे के गांव में भी इस तरह से जाते थे कि भाई मेरा कॉल लगाओ आज सुनना। तो कह सकते हैं कि अभी इंटरनेट के द्वारा आज एप्लीकेशन के माध्यम से हम भारत के कोई भी राज्य में हो तो फोनिंग प्रोग्राम या अन्य प्रोग्राम सुन सकते हैं।
1: सही बात है, बिल्कुल सही, कोने कोने में सुन सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो आज अपन कौन सा गीत सुनेंगे?
0: आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा, करेगा जो भी भलाई के काम उसका ही नाम रह जाएगा। मेरा ये मानना है कि ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ आपको दिया है तो भलाई के काम खास तौर पर छोटे बच्चे से करवाया जाए, और कुछ ना कुछ ऐसी रकम दी है तो हम जानवरों का भी ख्याल रखें, पशु पक्षी का भी ख्याल रखें।
1: सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही।
0: भले वो चीज 5 रुपए की हो मगर इस तरह से कुछ ना कुछ कार्य करते रहे।
1: जी जी जी, सही बात है।
0: और ये जो दुआ है मिलती है खास तौर पर सातों आसमान तक पहुँचती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
0: तो ये गाना सुनूंगा।
1: चलो ठीक है, तो चलें गीत की ओर। नमस्कार भैया।

0: हेलो,
1: जयराम जी, कुशवाहा जी।
0: जय श्री राम। जय श्री राम भैया, कहाँ से?
1: सरसीर से दीनदयाल बुलवाई हुई।
0: जी दीनदयाल भैया, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है माता दीन, बस आपका कार्यक्रम चल रहा है, बढ़िया सुन रहे
0: चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने चलते चलते समय पे फोन लगा लो।
1: बिल्कुल, और गीत तो चार्जिंग सुनवा, गीत की कोई बात नहीं है।
0: जी बिल्कुल, वही हम सोच रहे थे कि गीत तो आप देखो सुन लो, सो ठीक है, सुनाई है अपन, और समय अपनों कार्यक्रम को पूरा हो रहा हो।
1: हम एक बात जो कह रहे
0: जी
1: थे कि जितने सोचा जो बुंदेलखंड के वो बुंदेली में बात करी जाए, जो अफजल भाई बोल रहे थे बावना गुजरात से, उनसे हिंदी में बात करी जाए,
0: हाँ सही कह रहे हैं आप।
1: और बीच बीच में नंबर भी दोहरा उतरा है, और अकाई ग्राम में उतरा है, जैसे बैठा जी कहीं व्यस्त हो गई तो आप भी आ जाए करो।
0: चलो बढ़िया, और सब मजेदारी?
1: और सब बढ़िया है, मतलब है। ठीक
0: चलो बहुत अच्छी बात है, आपको फोन लगा, धन्यवाद, नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार।

बिल्कुल दोस्तों, दुख जाएगा और सुख आएगा। देखो कितना प्यारा गीत अपन सुन रहे थे, गीत को आनंद ले रहे थे। वे गीत के संगे संगे हम आपको बता देंगे कि आज के अपने फरमाइशी कार्यक्रम से जावे को समय होगा है। सो अपने दोस्त माता दिन भैया खुदोई कार्यक्रम से जावे की अनुमति और चलत चलत आप सुनो ये हिंदी गीतन खो लो गीतन को आनंद। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे।

0: काव्य धारा। नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम कप्ताएं। जी हाँ दोस्तों, कप्ताएं कार्यक्रम में अपन सुनते हैं कछु कवि साथियन की गाय भाई कप्ताएं खो। सो आज सुने अपन भैया कवि जी जो रेडियो बुंदेलखंड पे
1: और मैं मंच संचालन शेख आजाद
2: यारों की तुम फेरों पर अभिमान करो, तुम फेरों पर अभिमान करो।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
2: इसी के साथ एक मेरी रचना है। आजकल जैसा कि युवाओं को लेकर के ही देश में एक लंबी विचारधारा चल रही है युवाओं को जोड़ने के लेकर के और युवाओं को अपने देश से जोड़ने को लेकर के, देश प्रेम से लेकर जोड़ने के लिए, तो ये विचार क्या होता, मैं विचार अपनी चंद लाइनों से आपको बताना चाहूंगा। जिससे भला ना हो किसी भी वर्ण जाति का, कल उसित काम व्याभिचार माना जाता है।
1: बहुत अच्छा।
2: और जग को नई दिशा दे और कल्याण करे, चीरकाल सिद्ध हो विचार माना जाता है। विचार उन शब्दों को कहते हैं जो जैसे आज प्रभावी

0: है, आज के 10 साल बाद भी प्रभावी होने चाहिए, 100 साल बाद भी प्रभावी होने चाहिए, चिरकाल सिद्ध हो विचार माना जाता है। और जित परिवार में हो लेन देन मोल भाव, परिवार नहीं वो बाजार माना जाता है। और नफा नुकसान हो आधार, जिन रिश्तों का रिश्ता नहीं उन्हें व्यापार माना जाता है। और देश शेष हो नहीं हो प्रेम एक दूसरे से, देश शेष हो नहीं हो प्रेम एक दूसरे से, धर्माचरण ही व्यवहार माना जाता है। और वसुधा का हित हो निहित जिन शब्दों में, वसुधा का हित हो निहित जिन शब्दों में, उन्हीं को तो भागवत का सार माना जाता है।
1: क्या कहना, क्या कहना भाई।
0: इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।
2: श्रोताओं, जो अभी तक हम सभी को संचालन करके और काव्य पाठ करा रहे थे, मैं श्री आजाद अंजान जी को, जो झांसी से हमारे बीच पधारे हुए हैं, उनको इन पंक्तियों से आवाज देता हूँ कि समंदर के किनारे घर बनाना छोड़ देते हैं, समंदर के किनारे घर बनाना छोड़ देते हैं, परिंदे धूप में क्या आबोदाना छोड़ देते हैं, और सभी को है खबर एक दिन तो बेशक मौत आनी है, सभी को है खबर एक दिन तो बेशक मौत आनी है, तो क्या डरकर कमाना और खाना छोड़ देते हैं। श्री आजाद अंजान जी अपना का
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 चैनल पर सभी श्रोताओं का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं इन चार पंक्तियों के साथ कि मेघों का आपके गांव में आना नहीं हुआ।
2: क्या कहने,
3: क्या बात, क्या बात।
1: जुलाई निकलने वाला है, बारिश नहीं हुई है,
2: बिल्कुल
1: मेघों का आपके गांव में आना नहीं हुआ।
2: क्या कहने,
1: मुफलिस की रोटियों का ठिकाना नहीं हुआ।
3: क्या बात है, क्या
1: मेघों का आपके गांव में आना नहीं हुआ, मुफलिस की रोटियों का ठिकाना नहीं हुआ, कैसे जवान बेटी ब्याहे वो इस बरस, कैसे कैसे जवान बेटी ब्याहे वो इस बरस, खेतों में जिसके अन्न का दाना नहीं।
2: क्या कहने, क्या कहने, बहुत
1: कैसे जवान बेटी ब्याहे वो इस बरस, खेतों में जिसके अन्न का दाना नहीं हुआ। इस गोष्ठी में एक बेटी विराजमान है, उसके लिए मैं चार पंक्ति और पढ़ना चाहता हूँ कि आंसू हमारी आंख को देकर चला गया,
2: आंसू हमारी आंख को देकर चला गया,
1: खुशियां थी जितनी सारी लेकर चला गया, पुरखों की जो निशानी था कच्चा मकान मेरा, मेरी बेटी को घर मिला तो मेरा घर चला गया।
2: क्या कहने,
1: पुरखों की जो निशानी था कच्चा मकान मेरा, मेरी बेटी को घर मिला तो मेरा घर चला गया। एक गीत देखिए, कौमी एकता का गीत पढ़ना चाहता हूँ।
2: स्वागत है भाई, स्वागत है।

0: वतन है।
1: ये मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन है। ये मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन है। सजा चांद और सितारों से नील गगन है।
2: क्या बात।
1: सजा चांद और सितारों से नील गगन है। ये मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन है।
2: गीत का पहला बंद हाजिर कर रहा हूँ, स्वागत है।

वाह है कौन हिंदू कौन सिख कौन मुसलमान, है कौन हिंदू कौन सिख कौन मुसलमान, मजहब के नाम बांटो ना हमको तुम यहाँ। यहाँ होली के संग ईद मनाने का चलन है,

0: हमको न गैर समझो हमारा भी है वतन, हमको न गैर समझो हमारा भी है वतन, अपने लहू से सींचा है हमने भी ये चमन, हमको न गैर समझो हमारा भी है वतन, हमको न गैर समझो हमारा भी है वतन, अपने लहू से सींचा है हमने भी ये चमन, गद्दार घर कहोगे तो होगी हमें चुभन, गद्दार घर कहोगे तो होगी हमें चुभन, ये जान से भी प्यारा है हमको ये वतन, सूरज हो आप इसकी हम एक किरण है, सूरज हो आप इसकी हम एक किरण है, ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन। गीत का आखिरी बंद देखिए, जो देश के नाम उन शहीदों के नाम मैंने समर्पित किया है, खासतौर से इस बंद के लिए ही मैंने ये गीत लिखा। अब्दुल हमीद राजगुरु को मेरा नमन, अब्दुल हमीद राजगुरु को मेरा नमन, नेता सुभाष और भगत सिंह को भी नमन, अब्दुल हमीद राजगुरु को मेरा नमन, नेता सुभाष और भगत सिंह को भी नमन, जो बांधे हैं सर कफन को उनको मेरा नमन, जो दे गए शहादत उनको मेरा नमन, वह लाखों शहादतों से ये आजाद वतन है, वह लाखों शहादतों से ये आजाद वतन है, ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है, होली के संग ईद मनाने का चलन है, ये गीता और कुरान का पैगाम अमन है, सूरज हो आप इसकी हम एक किरण है, हुआ लाखों शहादतों से ये आजाद वतन है, ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है, ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है,
1: भारत माता की
2: जय।
0: मैं रेडियो बुंदेलखंड 90.4 चैनल पर अपनी बातें, अपना रेडियो अपनी बातों में आज की गोष्ठी में जो हमारे बीच कवि पधारे, मैं उनका बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उनमें सर्वश्री अंजान मिश्र अंजान प्रतापगढ़ जो हास्य के बड़े कवि हैं, श्रीमती सुनीता जो दिल्ली से हमारे बीच पधारी हैं, श्रृंगार की कवित्री हैं, गुस्ताख शायर रोहित दतिया ये भी श्रृंगार के एक बड़े कवि हैं, सत्या चौधरी जिन्होंने ओज में इस आज की गोष्ठी में समा बांध दिया, झांसी से हमारे बीच हैं, वैभव दुबे संवेदना का एक बड़ा नाम जो जिन्होंने अपने गीत से एक भ्रूण हत्या को एक बड़ा प्रहार किया है, उनका भी मैं बहुत आभार करता हूं। और मैं संचालन करने वाला एक छोटा सा सबसे व्यक्ति शेख आजाद अनजान, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद।
3: देखो दोस्तों जी, तो सुनिए अपन सब जन ने कप्ताएं और इन कप्ताएं को आनंद लव है। दोस्तों जी कप्ताएं पढ़ी गई हती, यानी कि रेडियो बुंदेलखंड पे जा कब गोष्ठी भई हती, सो अपन सब जन ने जी इतने कप्तान को सुनी ही। दोस्तों अगर आप और भी ऐसी कप्ताएं गाउत हैं लिखत हैं तो आप जरूर हमें संपर्क करें। दोस्तों हमारा संपर्क नंबर है 9532354336 और हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड है 90.4 तारा ग्राम ओरछा तिगेला के पास ओरछा। अब दोस्तों आप और कह रही हो कि माता दिन भैया बिलाटेम से कप्ताएं सुनवा रहे और मनोरंजन की तरफ गीत की तरफ कोनो ध्यान नहीं दे रहे, बिल्कुल दोस्तों गीत के लाने आ सुन लेते हैं बढ़िया से गीत को और लेते हैं गीत को आनंद। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दिन के संग में।

0: बिल्कुल दोस्तों, धन दौलत दो ऊपर बारे, हम हैं जे बिटियन बारे। देखो कितनो प्यारो जो गीत अपन सब जनन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया हर प्रसाद कुशवाहा जी। अब दोस्तों एक गीत के संगे संगे हम आप सब जन को बता दे में कि आज के ये कार्यक्रम कप्तान से आपके दोस्त माता जी भैया को जाबे को समय हो गए है। सो दोस्तों हमें दो ये कार्यक्रम से जाबे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात ये कार्यक्रम में यही बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार। काव्य धारा
1: आजीविका जाने सुने।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो साथी मनीष कार्यक्रम आजीविका में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, आप जानते हैं कि आजीविका कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए उनकी आय को बढ़ाने के लिए कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं इस बारे में हम कार्यक्रम बनाते हैं और कार्यक्रम के माध्यम से उनको बताते हैं। कहा जाता है दोस्तों, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है और पद चिन्ह बनाने वाला ही इस जग में पूजा जाता है। हाँ दोस्तों, ये कहावत जो कही जाती है, सुनी जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है और उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। छोटी छोटी कहावतों से कहा जाता है कि हम जब किसी के पद चिन्हों पर चलते हैं, किसी के मार्गदर्शन से हम चलते हैं, किसी के मार्गदर्शन द्वारा हम चलते हैं, तो हम आगे चलकर एक सफल उद्यमी माने जाते हैं। जो कि हमने कार्यक्रमों में पहले भी बताया था कि उद्यमिता क्या है, उद्यमिता होने के क्या महत्व है। आज के साथ ही हमारे कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे सफल उद्यमी के क्या क्या गुण होने चाहिए, कैसे उनको व्यवसाय लगाने चाहिए जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि हो सकी। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में साथियों आपको ले चलते हैं हितेश धाकड़ जी के पास, जो उप निदेशक हैं हमारे औद्योगिक विभाग से, और साथ में कुछ हमारे विषय विशेषज्ञ हैं जो उद्योग को लेकर काफी अच्छी उनको पकड़ है। उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि एक सफल व्यक्ति बनने के लिए उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए और कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए जिससे हमारे युवा साथी अपने कार्य में सफल बने, आगे चलकर सफल उद्यमी कहलाए। तो आइए हम आपको हितेश धाकड़ जी के पास ले चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि हमारे युवा साथी किस तरीके से सफल उद्यमी बनने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। आइए इनसे बातचीत करते हैं। एक सफल उद्यमी जैसे हमारा साथी बनना चाहता है तो उसके लिए क्या गुण उसके अंदर होने चाहिए?
1: एक सफल उद्यमी की पहली विशेषता होती है अनुभव।
0: जी,
1: अनुभव और उसका ज्ञान होना।
0: जी,
1: आप जिस भी उद्यम की स्थापना करना चाहते हैं या जिस भी व्यवसाय की आप स्थापना करना चाहते हैं, उसको आपको बारीकी से ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो आप अगर हमारे युवा किसी उद्यम की स्थापना और अग्रसर होना चाह रहे हैं या आकर्षित हैं, तो उन्हें पहले ये निश्चित करके कि आप करना क्या चाहते हैं और आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र विशेष में जहां आप उद्यम की स्थापना करना चाहते हैं, वहां क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है।
0: जी जी,
1: क्योंकि देखिए मार्केटिंग भी बहुत बड़ा इशू आता है।
0: बिल्कुल,
1: केवल उद्यम लगाना ही पर्याप्त नहीं होता, मार्केटिंग स्किल भी होनी चाहिए।
0: जी,
1: तो सबसे महत्वपूर्ण गुण यही है कि पहले तो मार्केट स्टडी करें, जिस चीज की आवश्यकता यहाँ पे है।
0: जी,

0: इस चीज की उपलब्धता वहां पर है,
1: जी
0: और जो हम उद्यम चलाने वाले हैं उसकी मार्केटिंग हम किस तरीके से लोकल में या बाहर के क्षेत्रों में कर पाएंगे।
1: जी
0: तो
1: जी
0: उससे उसको उद्यम लगाने से पहले हमारे युवाओं को थोड़ा सा बेसिक जानकारी उस चीज की होनी चाहिए।
1: जी जी जी
0: अब बात आती है फाइनेंस की, क्योंकि वित्त पोषण की एक समस्या रहती है उद्यम के विकास के लिए।
1: जी
0: तो काफी विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं, शासकीय योजनाएं, मध्य प्रदेश शासन की भी योजनाएं हैं, शासन की भी योजना, उनके अंतर्गत हम वित्त पोषण की सुविधा प्रदान कराएंगे।
1: जी जी सर एक चीज और जानना चाहेंगे, चूंकि व्यवसाय तो ठीक है लोग लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति को अगर देखा जाए, बुंदेलखंड की भौगोलिक स्थिति को जाना जाए, तो क्या यहाँ पर कौन कौन से ऐसे व्यवसाय संभव है जो कि आसानी से लोग कर सकते हैं?
0: देखिए अगर ओरछा या फिर निवाड़ी जिले या बुंदेलखंड की बात की जाए तो यहाँ पे कई सारी संभावनाएं हैं।
1: जी
0: रिसोर्सेस हमारे पास प्रकृति की देन, प्रकृति की कृपा से हमारे पास काफी सारे रिसोर्सेज।
1: जी
0: तो एक तो मिनरल, मिनरल्स के क्षेत्र में काफी कुछ किया जा सकता है।
1: जी
0: हालांकि निवाड़ी के ओरछा तहसील में काफी सारी इकाइयां खनिज की लगी हुई हैं। इसके अतिरिक्त आता है आपका जो बढ़ती हुई जो आवश्यकताएं हैं, आप जो वुमन बैग्स होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि कल 2 अक्टूबर के बाद से सिंगल यूज प्लास्टिक का हमें खात्मा करना है।
1: जी जी
0: ये सतर्क रहना है, तो फलस्वरूप एक उसकी वैकल्पिक उपयोग की आवश्यकता बढ़ेगी।
1: जी जी
0: पॉलिथिन का वैकल्पिक क्या हो सकता है, तो हम जूट के थैले, वुमन बैग, वो क्या डिग्रेडेबल रहते हैं, जो प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाते हैं, उसकी इकाइयों की स्थापना कर सकते हैं।
1: जी
0: इसके अतिरिक्त छोटे उद्यमों की भी स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि सोना पत्तल हुआ,
1: जी
0: क्लाइक ब्रिक्स हुआ,
1: जी जी जी
0: सीमेंट उद्योग हुआ।
1: जी
0: क्योंकि तो हमारे यहाँ पत्थर और जो बाकी प्राकृतिक पत्थर इनकी भरपूर उपलब्धता है, तो सीमेंट और पेवर्स क्लॉथ वगैरह की काफी संभावना इस क्षेत्र में है।
1: जी जी जी और यहाँ पर सर उद्योग स्थापित कर तो लेते हैं, लेकिन वही समस्या यहाँ पर आती है लोगों को कि उनको ट्रेनिंग्स की आवश्यकता रहती है, तो क्या सरकार की ओर से ऐसी कोई ट्रेनिंग्स लोगों को दिलाई जाने की बात की जा रही है, या फिर ट्रेनिंग्स दिलाते भी हैं यहाँ पर?
0: जी जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं अपने युवाओं को बताना चाहूंगा कि हर जिले में एक RCT की स्थापना की गई है,
1: जी
0: रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,
1: जी
0: यह उस जिले की अग्रणी बैंक द्वारा संचालित किया जाता है, हमारे टीकमगढ़ जिले में SBI द्वारा संचालित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये लोगों को ट्रेनिंग देना, उद्यमिता से जुड़ी हुई ट्रेनिंग देना।
1: जी
0: हमारे इच्छुक युवा, हमारे इच्छुक भाई बहन जो भी उद्यमिता संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, वो एक आवेदन RCT टीकमगढ़ में कर सकते हैं, तथा उनको अगले बैच में जब उनका जो ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी तो उन्हें सूचना देके उनको बुला लिया जाएगा। तो ये हर ट्रेड वाइज, हर उद्यम वाइज ट्रेनिंग रहती है, जिसके दिन अलग अलग रहते हैं, तो जो भी युवा इच्छुक है उनको हम ट्रेनिंग शासन की तरफ से मुहैया कराते।
1: सर कितने दिन की इसमें ट्रेनिंग मुहैया कराते हैं?
0: ये ट्रेड के ऊपर निर्भर करता है, जैसे कि किसी को 15 दिन की ट्रेड रहती है तो उसका 15 दिन का रहता है, 20 दिन का रहता है, किसी का 1 महीने का रहता है, किसी का 5 दिन का भी रहता है, तो ट्रेड के ऊपर निर्भर रहता है
1: जी
0: कि आपको कितने दिन की ट्रेनिंग दी है।
1: सर प्रशिक्षण के बाद यदि उसको प्रमाण पत्र मिलता है तो क्या बैंकों में उसकी, जैसे हम सबमिट करते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ उस प्रशिक्षण वाले प्रमाण पत्र को, तो उसमें कुछ सहूलियत होती है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, उसमें देखो प्लस पॉइंट हमेशा आवेदक को मिलता है, वो ये वो जब वो सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो वो यह दर्शाता है कि उसके पास एक अन्य लोगों से विशिष्ट उपलब्धि है, उसको उस क्षेत्र का ज्ञान है, उस क्षेत्र का जो भी अनुभव है वो ट्रेनिंग में उसने लिया गया है।
1: जी।
0: तो मेरे अनुसार बैंक उसको अधिक कंसीडर करती है, उस पर अधिक विचार करती है और उसको जरूरी लाभ मिलता है।
1: जी अभी वर्तमान में सर उद्योग विभाग की ओर से कौन कौन योजना संचालित की जा रही है?
0: जी वर्तमान समय में उद्योग विभाग में 4 योजना संचालित की जा रही है रोजगार मूलक, जिसमें 3 मध्य प्रदेश शासन की योजना है और 1 केंद्र शासन की योजना है।
1: जी
0: सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दी।
1: जी
0: हमारे यहाँ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना,
1: जी
0: युवा उद्यमी योजना,
1: जी
0: और किसान पुत्र पुत्रियों के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना संचालित है।
1: जी
0: मुख्यमंत्री स्वरोजगार की बात की जाए तो उसमें 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण सेवा उद्योग तथा व्यवसाय सीमा श्रेणी के लिए लिया जा सकता है।
1: जी जी जी
0: जबकि युवा उद्यमी की बात की जाए तो ये 10 लाख

0: करोड़ तक की योजना है, इसमें केवल सेवा और उद्योग की इकाइयों के लिए ही ऋण दिया जा सकता है,
1: जी जी
0: व्यवसाय शामिल नहीं है
1: जी।
0: और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 50,000 से लेकर 2 करोड़ तक है, इसमें सेवा व्यवसाय तथा उद्योग तीनों प्रकार की इकाइयां स्थापित की जा सकती है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, केंद्र सरकार की सर कौन सी योजना है?
0: केंद्र सरकार की योजना भी हमारे यहाँ संचालित है, वो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।
1: सृजन कार्यक्रम
0: ये योजना 50,000 से लेकर 25 लाख तक है।
1: अच्छा अच्छा
0: जी, और इसमें सेवा तथा उद्योग की इकाइयों की कई स्थापना की जा सकती है, इसमें व्यवसाय आपकी श्रेणी में है।
1: चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे युवा साथियों को एक मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि उद्यमता के क्षेत्र में लोग अपने एक तरीके से विचार कर रहे हैं कि अब क्योंकि नौकरियां बहुत ही कम देखने को मिल रही हैं और बहुत ही कम रोजगार हो गए हैं, तो लोग अब उद्यमता की ओर रुख कर रहे हैं। आपने महत्वपूर्ण जानकारी देकर हमारे युवा साथियों को मार्गदर्शन दिया, इसके लिए धन्यवाद सर आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

अपना रेडियो अपनी बात है। एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, हमारे हितेश ढाकड़ जी ने कितनी अच्छी जानकारी हमारे युवा साथियों को दी कि किस तरीके से हमारे युवा साथी एक सफल उद्यमी बनने के लिए उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्या क्या उनको कार्य करने चाहिए जिससे वो सफल हों, अपने जीवन में सफल हों, अपने व्यवसाय में सफल हों। साथियों, आप जानते हैं कि क्या बातें हैं सबसे जरूरी कार्य में आनंद करने के लिए। ये एक गुण होता है जो आपको एक सफल उद्यमी बना सकता है। दूसरा कि गंभीरता, आप तब तक अपने व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते हैं जब तक कि आपका उसमें अटूट विश्वास ना हो। ये एक दूसरा गुण होता है जो आपको सफल उद्यमी बनाने में मदद करता है। तीसरा साथियों, आत्मविश्वास की कमी, जो कि हितेश जी ने बताया था कि आत्मविश्वास आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास किसी भी नए उद्यमी के लिए आत्मविश्वास सबसे जरूरी होता है। चौथा साथियों, योजना आपको बनानी चाहिए कि हमें कौन सा व्यवसाय लगाना है, कैसे लगाना है। पूर्ण योजना के साथ यदि हम व्यवसाय करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। अगली जो साथियों आपको सफल उद्यमी बनाने का गुण हम आपको बताते हैं, अगली जो गुण होना चाहिए हमारे युवा साथियों को जो सफल उद्यमी बनने के लिए, वो होना चाहिए खतरे उठाने वाला होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जोखिम आएंगे आपको, यदि आप उद्यम डालते हैं तो आपको सबसे पहले मार्केट बनाना होता है, और इसके बाद मार्केट के साथ साथ बहुत सारी समस्या जो रहती है वो सामने आती है। तो ऐसे में खतरे उठाने वाला होना चाहिए, तभी एक सफल उद्यमी वो बन सकता है। विशेषज्ञता रखने वाला होना चाहिए, यानी हर विषय में उसको जानकारी होना चाहिए। संबंध जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं उसकी विशेषज्ञता आपके पास होना चाहिए, खुद में निवेश करने वाला होना चाहिए। यदि ये सारे गुण आपके अंदर हो तो आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं और आप आगे जा सकते हैं। साथियों, कार्यक्रम में हम एक विराम लेते हैं, यानी लोकगीत के साथ मनोरंजन करते हैं। इसके बाद साथियों आपकी हमारी बातचीत होगी और आपको हम बिमल जी के पास ले चलते हैं, और बिमल जी चूंकि विषय विशेषज्ञ हैं उद्यमता को लेकर, तो उनसे जानते हैं कि आखिरकार हमारे युवा साथी यदि कोई व्यवसाय डालना चाहते हैं तो सफल बनने के लिए कौन कौन से गुण उसमें होने चाहिए, कैसे सफल हमारा व्यवसाय बन सकता है हमारा युवा साथी। तो आइए इस प्यारे से लोकगीत को हम सुन लेते हैं।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, अभी आपने हरप्रसाद कुशवाहा और उनकी साथियों में इस प्यारे से लोकगीत को सुना। आइए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे विषय विशेषज्ञ क्या कहते हैं, सफल उद्यमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आइए उनकी बातचीत को हम सुनते हैं विमल जी के साथ।

0: ऐसे में हम क्या करें कि अपनी आय को बढ़ाएं, या एक रेगुलर आय हमारे पास में एक आती रहे जिससे कि हम करते हैं। तो उसका ये कि है कि हमें कृषि के अलावा भी अन्य वैकल्पिक साधनों को खोजने की जरूरत है।
1: जी जी।
0: तो हम अपने क्षेत्र में क्या चीज ऐसी करें, कुछ ऐसा कुछ छोटा सा उद्योग लगाए, जिसमें बहुत कम पूंजी में कुछ उद्योग लगा करके कुछ ऐसा काम करके हम जो है वो अपनी आय की वृद्धि कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र में किन चीजों की खपत है, उन खपत के अनुरूप ही हमको उद्यम लगाने की जो है वो आवश्यकता है।
1: जी।
0: अगर हमारे यहाँ पर तेल तिलहन अधिक हो रहा है तो हम तेल का कुछ लगा लें, अगर हमारे यहाँ मसाले अधिक है तो मसाले की चीज लगा लें। तो कैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कोई आंवला जैसे हमारे यहाँ हो रहा है तो हम आंवले के अचार का लिए हम एक छोटा सा उद्यम लगा सकते हैं। कई प्रकार के उत्पाद जो है उसके भिन्न भिन्न प्रकार के बनते हैं। इसके लिए कुछ नहीं, हमको बहुत छोटी सी कोई हम महीने भर की ट्रेनिंग या दो तीन महीने की ट्रेनिंग लेकर के और किस प्रकार से उस प्रोडक्ट को लंबे समय तक हम बना सकते हैं और छोटा छोटा उद्योग लगाएं, ये भी अगर हम प्रयास करें तो हम अपने आय के साधन में जो है वो वृद्धि कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। आप सर बहुत बहुत धन्यवाद साथियों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी।
0: धन्यवाद।
1: अपना रेडियो अपनी बातें, आप हैं इस वक्त आपके अपने रेडियो साथी मनीष के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम आजीविका को। और साथियों अभी आपने बिमल जी से इतनी अच्छी जानकारी को जाना समझा और हमें तो लगता है कि अब हमें स्वयं का व्यवसाय करने में कुछ देर नहीं करनी चाहिए। यदि आपके पास ये सारे गुण हैं अच्छे उद्यमी बनने के लिए तो आप तुरंत उद्यम स्थापित आपको करना चाहिए और उद्यमिता में आप एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि आम तौर पर किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय में सफल होने के लिए उसके एक से अधिक पक्षों पर ध्यान देना होता है, परंतु एक उद्यमी की सफलता में सीधे तौर पर व्यवसाय से जुड़े पक्षों के अलावा कई ऐसे पक्ष भी जुड़े जाते हैं जिन्हें उसे काम शुरू करने से पहले और काम करते समय लगातार अभ्यास में लाना पड़ता है। क्या होती है एक सफल उद्यमी की विशेषता, आइए आपको हम थोड़ा और बता देते हैं, क्योंकि हमारे विषय विशेषज्ञ और साथ में उद्योग विभाग के उपनिरीक्षक ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए आपके पास कौन कौन से गुण होने चाहिए। हमने भी आपको बीच बीच में बताया कि हमारे युवा साथी किस तरीके से एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। कहा जाता है कि दोस्तों उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं, वह ग्राहकों को तैयार करता है और ग्राहक रोजगार और आर्थिक विकास को आगे ले जाने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक उद्यमी की राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की दिशा में बहुत बड़ी भूमिका होती है। दरअसल विकास के एक पड़ले पर अगर रचनात्मकता और विचार खोज और नवीनीकरण देखते हैं तो दूसरे पड़ले पर आर्थिक

व्यापारिक पक्ष नजर आता है। इन दोनों पर्णों को यदि हम अपनी अनोखी सोच से साधने वाले व्यक्ति ही एक सफल उद्यमी कहलाते हैं। कहा जाता है कि क्या सचमुच एक सफल उद्यमी पैदा नहीं होते हैं? इस सवाल के जवाब में यह कहा जाता है कि एक सफल उद्यमी में कुछ प्रतिशत जन्मजात प्रतिभा होती है और बाकी वह सीख सकता है। यह भी कहा जाता है कि उद्यमी एक घोड़े की तरह होता है जो नवीन विचारों की गाड़ी को खींचता है, और उसका मतलब एक सफल उद्यमी होने के लिए व्यक्ति में एक साथ कई गुण बहुत जरूरी रहते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे प्राकृतिक तौर पर मिलते हैं और अन्य वह काम और अनुभव के साथ साथ चमका सकता है। व्यवसाय विशेषज्ञों का यही कहना है कि सफल उद्यमी किसी भी आयु वर्ग के हो सकते हैं और वह समाज के किसी भी घड़े में आ सकते हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि उच्च शिक्षा उसको अंदर होनी चाहिए और उनके व्यक्तित्व के अलग अलग तरह के वो हो सकते हैं। इसलिए यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कई स्थानों पर उद्यमी के लिए उच्च शिक्षा ज्यादा काम आती है, लेकिन अपने काम को बुनियादी जानकारी जरूर काम आती है। जरूरी नहीं है कि आप प्रथम श्रेणी के उद्यमी ही साबित हों। प्रथम श्रेणी से मतलब ऊंचा लक्ष्य रखने वाला और हर समय काम करता हुआ दिखने वाला श्रेणी के छात्री सफल उद्यमी साबित होते हैं, ये कहा जाता है। तो साथियों, आप भी एक सफल उद्यमी बनिएगा और अपने व्यवसाय को आगे ले जाइएगा। कुछ छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखिएगा और आप अपने व्यवसाय की ओर मुड़िएगा। इसी के साथ साथियों, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम आजीविका से जाने का। तो हमें आशा है कि कार्यक्रम सुनकर आपके मन में कई सारे सवाल और कई सारे विचार आ रहे होंगे, तो आप जरूर पूछिएगा। नंबर आप नोट कर लीजिएगा, नंबर है हमारा 9919207749। व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसमें क्या जुड़ना चाहिए ये भी आप जुड़ सकते हैं हमारे इस नंबर पर। दोस्तों, हमारा नंबर है 9919207749। यदि हमारे श्रोता साथी चिट्ठी के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, पता नोट कर लीजिएगा। पता है हमारा, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगला के पास ओरछा। तो साथियों, अगले कार्यक्रम में किसी नए व्यवसाय, किसी नए सोच के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपने रेडियो साथी मनीष को दीजिए जाने की इजाजत और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा लोकगीत आजीविका से जुड़ा। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए हम तमाम प्रकार की रोजगार सूचनाएं हो या उनके करियर संबंधी जानकारी हो उस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने श्रोता साथियों तक पहुँचाते रहते हैं। आज चूंकि आज एक बहुत बड़ा विशेष दिन है और आज के हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज चूंकि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है, चूंकि हर कोई रोजमर्रा की जिंदगी में यथासंभव स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता को महत्व देता है, मरीज और फिटनेस के शौकीन आमतौर पर चोट, बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के कारण होने वाली गति संबंधी विकारों से जुड़ी शारीरिक अक्षमताओं के लिए फिजियोथेरेपी सेवाओं की तलाश करते हैं, जो उनके लिए जरूरी या महत्वपूर्ण किसी भी गतिविधि को करने या करने की उनकी क्षमता में बाधा डालती है। स्वास्थ्य सेवा द्वारा अपनाई जाने वाली अनेक प्रतिक्रियाओं में से चिकित्सीय व्यायाम एक प्रमुख तत्व के रूप में अपना स्थान रखता है, जो किसी व्यक्ति के कार्य को सुधारने या बहाल करने या शिथिलता को रोकने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों को केंद्र में होता है, जैसे कि संतुलन में सुधार, समन्वय विकसित करना, प्रगतिशील लचीलापन, गतिशीलता में सुधार, मांसपेशियों का प्रदर्शन और तमाम प्रकार की। चूंकि हम डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर ही बताएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमें मिल गए हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मनोज द्विवेदी जी। आज आप किसी परिचय के मोहताज, नाम आपने सुना ही होगा, सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, हमारे मित्र हैं मनोज द्विवेदी जी। आप चिरंजीव हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट स्पेशलिस्ट के रूप में वहां पर सेवाएं दे रहे हैं, बहुत सारे मरीजों को उन्होंने सही भी किया है और सोशल मीडिया के माध्यम से बताते भी रहते हैं। तो खास बातचीत में आप सुनिएगा कितनी महत्वपूर्ण रहता है ये फिजियोथेरेपी हमारे स्वास्थ्य के लिए। चलिए डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं।

0: सबसे पहले मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो बुंदेलखंड के सभी श्रोताओं को। मुझे बड़ी खुशी है रेडियो बुंदेलखंड के मंच पर आने पर, और चूंकि ये चैनल मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता और जानकारी भी प्रदान करता है, तो सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मनोज जी, हम जानना चाहेंगे कि चूंकि विश्व थेरेपी दिवस, चूंकि एक अलग लोगों को समझ में भी नहीं आता, खासतौर पर अगर ग्रामीण परिवेश में अगर देखा जाए, जोड़ा जाए इसको, तो इसकी शुरुआत इतिहास किस तरीके का रहा है, थोड़ा हमारे साथ बताइएगा।
1: देखिए, इसकी शुरुआत 19वीं सदी में यूरोप से शुरू हुई
0: जी।
1: और जैसे कि वर्ल्ड वार टू, और इस दौरान बहुत सारी कैजुअल्टी और बहुत सारी इंजरीज हुई, तो उस दौरान विकलांगता या जो इंजरीज के दौरान चलने उठने बैठने में असमर्थता आई, तो उसके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल या भूमिका अहम होती चली गई, वहां से ये विकसित होता चला गया। दूसरी बात कि भारत में स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे इसका समावेश होता चला गया, और आज ये किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत अहम भूमिका प्रदान कर रही है
0: जी। मतलब जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि जो फिजियोथेरेपी, और खासतौर पर आप स्पेशलिस्ट भी हैं, आप इतने सालों से सेवाएं दे रहे हैं, किस तरीके की मरीज यहाँ को देखने को मिला है आपको, किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है, और खासतौर पर ये इलाज किस तरीके से लोगों को एक रामबाण साबित होता दिखाई दे रहा है।
1: देखिए, मैं करीब करीब बुंदेलखंड क्षेत्र में 15 साल से फिजियोथेरेपी की सेवाएं दे रहा हूँ। खासकर अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं, तो बहुत सारे हमारे ग्रामीण भाई बहन अपने खेतों में काम करते समय या अपने गांव देहात में मजदूरी करते समय बहुत सारी परेशानियों से जूझते हैं। जैसे

0: खेतों में काम करते समय कमर की तकलीफ होना या लंबे समय तक झुके रहने की वजह से गर्दन में समस्या होना या बुवाई के समय खासकर जो है किसान भाई जो है हमारे तो उनको घुटनों में दर्द होना, तो इस तरह की समस्याएं लेकर जब हमारे पास आते हैं तो उसमें बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारी पद्धतियां हैं जिनका फिजियोथेरेपी के माध्यम से इलाज किया जाता है।
1: सर एक चीज और जानना चाहेंगे, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होंगे हमारे साथी, फिजियोथेरेपी और नॉर्मल जो इलाज कराते हैं क्या अंतर दिखाई देता है और क्या लोगों को समस्याएं आती हैं?
0: देखिए आज के समय में बहुत सारे जो हमारे जागरूक भाई बहन हैं तो उनका ये मानना रहता है कि अगर बिना दवाई या बिना जो है ऑपरेशन के क्या कोई ऐसी पद्धति या चिकित्सा विधि है जिसके माध्यम से हम ठीक हो सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि बहुत सारी परेशानियां जैसे कि मांसपेशियों का दर्द हो गया या जोड़ों का दर्द हो गया या नसों का दर्द हो गया या कुछ समस्याएं ऐसी हैं जैसे कि लकवा हो जाना या किसी अंग का काम नहीं करना, तो ऐसी समस्याओं में भी हम एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी या व्यायाम या कुछ मशीनों के योगदान या सिकाई से भी उसमें लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये पद्धति चिकित्सा क्षेत्र की ही है, तो कई बार बीमारियों में मेडिसिन के साथ साथ या दवाइयों के साथ साथ भी फिजियोथेरेपी का योगदान रहता है।
1: जी, खासतौर पर सर देखा जाता है अगर ग्रामीण अंचल की बात करें तो देखा जाता है कि लोग अगर कुछ भी समस्या आती है, खासतौर पर अगर उनको पैरों में दर्द हुआ या फिर चेस्ट पेन हुआ, इस तरीके की कोई भी समस्या आती है, पेन किलर जो रहती है, दर्द निवारक गोलियां जो रहती हैं खासतौर पर वो खा के उसका निदान कर लेते हैं, आपको क्या लगता है इससे लोगों के शरीर में जो नुकसान दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर आज जो विकट समस्याएं सुनने को और देखने को मिल रही है, कैंसर जैसी समस्याएं, बहुत सारे एक्सपर्ट भी कहते हैं कि आजकल बहुत सारी ऐसी दवाइयां और रोज रोज दवाइयां खाने से हमारे शरीर में बहुत सारा नुकसान होता है, क्या कहना चाहेंगे
0: मनीष जी? ये आपने बहुत ही उम्दा सवाल उठाया है और इसका मुझे लगता है कि हमारे हर भाई बहन को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए हर छोटी समस्या के लिए तुरंत पेन किलर ले लेना या दर्द निवारक दवाई का सेवन करना उचित नहीं है, जब तक कि वो बहुत ज्यादा विकट समस्या का रूप ना ले ले। मैं कहूंगा कि छोटे या छोटे मोटे शारीरिक कष्ट के लिए आपको दर्द निवारक दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए, और अगर आप करते भी हैं तो आपको डॉक्टर की उचित सलाह के बाद लेना चाहिए। रही बात छोटे दर्द वगैरह के लिए या छोटी मोटी दिनचर्या में जो आप कष्ट लेते हैं उसके लिए, तो आप उसके लिए छोटे मोटे व्यायाम, अपनी दिनचर्या में बदलाव और सही पोषण के माध्यम से आप उसको ठीक किया जा सकता है।
1: जी, लेकिन यहाँ पर तो समस्या यही आती है कि लोगों को, चूंकि ऐसा माना जाता है, चूंकि मैं जाना स्पेशलिस्ट नहीं हूं उस चीज में, लोग कहते हैं कि फिजियोथेरेपी से और जो हम लोग नॉर्मल दवाइयां लेते हैं उसमें थोड़ा समय लगता है, फिजियोथेरेपी कराने में थोड़ा समय लगता है, जो कष्ट रहता है उनको जो दर्द रहता है वो फिजियोथेरेपी से क्या धीरे धीरे जाता है, ऐसा लोग मानते हैं, आपका क्या मानना है कि ये क्या चीज
0: मतलब? देखिए मैं कहूंगा कि फिजियोथेरेपी भी लाभ देती है और दवाइयां या और जो पद्धति है वो भी लाभ देती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूं कि जैसे आर्थराइटिस है या गठिया हम कहते हैं, तो गठिया में बहुत सारी चीजें हैं जैसे सूजन बढ़ रही है या किसी जोड़ के बीच में इन्फ्लामेशन या संक्रमण फैल रहा है, तो उसमें योगदान रहेगा मेडिसिन का या दवाइयों का जो उस संक्रमण को रोकने का काम करेगी। लेकिन अगर उस जोड़ में संक्रमण के साथ साथ मांसपेशियां भी कमजोर हो रही है या स्नायु टाइट जकड़ रहे हैं या टाइट हो रहे हैं, तो उस कमजोरी को ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी का योगदान लिया सकता है और उस संक्रमण को कम करने के लिए दवाइयों का योगदान लिया सकता है, तो दोनों का ही सम्मिलित रूप मरीज को और बेहतर तरीके से ठीक कर सकता है।
1: ऐसा नहीं लगता है कि मतलब इसमें जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ देर बाद आएगा, कुछ दिनों बाद आएगा, ऐसा लोग कहते हैं?
0: ये बिल्कुल सही कहना है मनीष जी आपका। जी। है क्या कि फिजियोथेरेपी जब हम प्रारंभ करते हैं किसी समस्या को लेकर के, तो हमें उस मांसपेशियों को या उस जोड़ को पूरी तरह से ठीक करने में

0: समस्या सामान्य लाने में एक समय लगता है। हो सकता है कि यह समय कुछ दिनों से लेकर के महीनों तक में लग जाए, क्योंकि जितनी पुरानी समस्या होगी उसको ठीक होने में भी उतना समय लगेगा, जितनी गंभीर समस्या होगी उसके उपचार में भी उतना ज्यादा समय लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि फिजियोथेरेपी थोड़ा सा टाइम ले सकती है पूरी तरह से ठीक होने में।
1: एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, खासतौर पर जब हम समुदाय के पास जाते हैं तो एक बहुत बड़ी विकट समस्या देखने को और सुनने को मिल रही है कि खासतौर पर महिलाओं और पुरुषों के घुटनों में ये दर्द होता है। क्या मानना है, किस कारण से होता है, क्या खान पियन से होता है, खान पान से होता है, क्या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे होता है, क्या लगता है किस तरीके से आजकल ये जो समस्याएं देखने को मिलती और दिन प्रतिदिन ये बढ़ती चली जा रही है, इस इलाज इसको फिजियोथेरेपी में किस तरीके से कर सकते हैं?
0: मनीष जी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कि हम युवा अवस्था में हैं
1: जी,
0: तो उस दौरान बहुत सारे जो है खेल कूद के दौरान या हमारे कुछ क्रियाकलाप के दौरान चोटें लग जाती हैं
1: जी।
0: उन चोटों की वजह से हो सकता है उस युवा अवस्था में, चूंकि हम अभी यंग हैं, हमारी मांसपेशियां मजबूत हैं, हमारे जोड़ मजबूत हैं, तो ये समस्याएं हो सकता है उस समय या उस अवस्था में कम महसूस हो, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो वो जो पुरानी चोटें हैं ये उभर के आने लगती हैं या हमारे जोड़ को बहुत जल्दी जो है संक्रमित करना शुरू कर देती हैं। तो एक तो ये वजह है, दूसरी वजह ये है कि अगर हमारा खान पियन अच्छा नहीं है, हमारा जो दैनिक दिनचर्या है वो बहुत हमारी फिजिकल एक्टिविटी या हमारे शारीरिक व्यायाम से संबंधित कह लीजिए वो कम है, तो हमारी मांसपेशियां जो रहेंगे जो उम्र के साथ हमारे जोड़ों को प्रभावित करेंगे। दूसरा, अगर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे गठिया हो गया, डायबिटीज हो गया या और भी तमाम तरह की समस्याएं हैं, वो भी इन जोड़ों को बहुत जल्दी प्रभावित करती है। अगला कारण ये हो गया कि अगर हमारी जलवायु में, खासकर जो है ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे कि अब बहुत ज्यादा क्लाइमेट परिवर्तन की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है या सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो वह भी हमारे जोड़ों को प्रभावित करती है जिनसे ये समस्याएं होना शुरू हो जाती है।
1: इसका निदान किस तरीके, क्योंकि फिजियोथेरेपी आप काफी सालों से इस पर काम कर रहे हैं, आपने बहुत सारी डिग्रियां भी हासिल की हैं और खासतौर पर आपने एक फोकस तरीके से इसको चीज को बिल्कुल बारीकी से लिया है। ग्रामीण अंचल की अगर बात करें तो ग्रामीण अंचल के लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं खासतौर पर इस फिजियोथेरेपी को लेकर?
0: देखिए, अगर आपको कुछ भी मांसपेशी संबंधित या जोड़ों से संबंधित समस्या होती है तो हमारा ये मानना रहता है कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा आराम मिल जाता है उस तकलीफ में, फिर हम काम में लग जाते हैं। तो मैं कहूंगा ये पद्धति ना अपनाएं। अगर आपको समस्या लंबे समय से है या वो समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो मैं कहूंगा कि अपने डॉक्टर से या फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह जरूर लें और उनका मार्गदर्शन लेकर के उन चीजों को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें, जिससे आप समस्या से बच सकते हैं और समस्या से निदान भी पा सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बात की है। और साथियों, हम चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वातावरण बदल रहा है और खास तौर पर ये आज हम जो बीमारियां सुनने की और देखने को मिल रही हैं, बहुत चिंताजनक बात है। हमें इसको समझना होगा, खास तौर पर ग्रामीण अंचल में इस बात पर हमें विचार करने की जरूरत है कि हमें कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी के ओर रुक करना होगा और यही इलाज है, क्योंकि आजकल ये जो बीमारियां सुनने को मिल रही हैं उसका सिर्फ एक ही इलाज है। किस तरीके से हम फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम इसका निदान पा सके। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले चरण में फिर से मिलेंगे, अगले भाग में जरूर मिलेंगे। कैरियर किस तरीके से बना सकते हैं इस पर हम जरूर बात करेंगे। बने रहिए आपके दोस्त मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4 FM।
0: नमस्कार।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और ये विशेष कार्यक्रम है आज, चूंकि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है, बड़े धूमधाम से, चूंकि डॉक्टरी लाइन में ऐसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, अपना एक महत्व भी रहता है। और खास बातचीत हमारे डॉक्टर मनोज द्विवेदी जी से आपने सुनी है, कितनी महत्वपूर्ण रहती है। और मतलब ये कहेंगे कि बुंदे

खंड का सबसे बड़ा फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर बना हुआ है, जहां पर तमाम प्रकार के एक्सरसाइज के माध्यम से और बहुत सारी आधुनिक मशीनों द्वारा यहां पर तमाम प्रकार के लोगों को, मांसपेशियों में जिनको खिंचाव है या पर किसी को लकवा मार गया है, तो एक एक्सरसाइज के माध्यम से किस तरीके से वो लोगों को राहत दे रहे हैं, बड़ा। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर मनोज द्विवेदी जी को, जिन्होंने ये प्रयास किया है। बुंदेलखंड क्षेत्र में एक वरदान साबित हो रहा है चिरंजीव स्पोर्ट इंजरी सेंटर, जो कि हॉस्पिटल में है डॉक्टर मनोज द्विवेदी। तो खास बातचीत आपने सुनी है, और भी हम तमाम प्रकार की बातचीत हम लेकर आएंगे। तो कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 9219207749, या फिर हमारे इस पते पर आप चिट्ठियां भी लिख सकते हैं, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगला के पास ओरछा। और आपके रेडियो साथी मरीज लेते हैं जाने की इजाजत, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। और

अगर आप होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बनाते, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमाई गांव हमाई सरकार। इस कार्यक्रम को साथियों हम बहुत दिन से चले आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे श्रोता साथी सबसे पहले जब ग्राम विकास की बात आती है तो ग्राम विकास में सबसे ज्यादा सरपंचन

अहम भूमिका रहेगी, आपको भी पता है और सब साथियों को हमारे पतो भी है गो। और तो और साथी रो अबई से अपन को ग्राम पंचायत जब से गठित हो गई हैगी, अपन को का करने हैंगे सरपंचन के संगे मिलके अपने ग्राम विकास को खाका तैयार करने हैं गो। संगे संगे जो नियमावली हैगी वह नियमावली के अनुसार अपन को काम करने हैं। सबसे पहले एजेंडा तैयार करने कि हमारे ग्राम पंचायत में कौन कौन से ऐसे काम रह गए हैंगे जो पंचायत कराते हैंगे और जिनकी मूलभूत आवश्यकता हैगी। तो सबसे पहले अपन हो जैसे बरसात को मौसम चल रहा है गो, बरसात के मौसम में सबसे पहले जब बैठक हुई हैगी तो बैठक में अहम चर्चा अपन हो का करने हैं गो कि सबसे पहले अपन हो एजेंडा तैयार करने खेती किसानी को कि खेती किसानी में हमारे किसान साथी कैसे काम कर सकते हैं, पानी को कैसे संरक्षित कर सकते हैंगे, बरसात के पानी को कैसे रोक सकते हैंगे, मेड़ बंधन कौन तरीके से करा सकते हैंगे, तालाब गहरीकरण कौन तरीके से हो सकते है गो। संगे संगे अपने पेयजल की का व्यवस्था है, सड़क की का व्यवस्था हैगी, शिक्षा की का व्यवस्था हैगी, रोजगार में जब अपन रोजगार की बात करते हैंगे तो ग्राम पंचायत में मनरेगा में बहुत सारा काम आते है गो, तो बाकी का व्यवस्था है। तो ये सारे चीजें अपन को लिख के वैसे तैयार करके रखने, आगामी ग्राम सभा जब भी हुई है तभी अपन को ये एजेंडा जो आपने तैयार करो, ये रूपरेखा आपने जो तैयार करी ग्राम पंचायत में लेके जाने हैंगे और सरपंचन के संगे जो बैठक होत हैगी, ग्राम सभा की बैठकें होते हैंगी, उनको जाके अपन को बताने हैं कि जे जे मूलभूत आवश्यकता है आप अपन को ग्राम विकास पे अपन को काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता हैगी। तो ये मूलभूत चीजें हैं जो अपन को सोचने हैं समझने हैगी। दूसरी बात आते हैगी कि स्वयं सहायता समूह हर ग्राम पंचायत में बन रहेंगे। तो ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत और स्वयं सहायता समूह की काब भूमिका रहता है ग्राम पंचायतों में बा विषय पर आज अपन बतकाव कर बे बारे हैंगे। छोटी छोटी बातें अपन ध्यान में रखे हैं कि कैसे बहुत ज्यादा आवश्यकता रहते है खासतौर पर स्वयं सहायता समूह जो काम करते हैंगे, मिलके जब काम करते हैंगे तो बहुत अच्छा लगता है, आनंदित होते हैं, बहुत सारी चीजें निकल के आते हैं। तो वो विषय पर अपन बतकाव कर भी जा रहे हैं लेकिन अपनी बातचीत काफी हो चुकी है तो अपन का ना अपन इतने 900 लोग गीत को सुन लेते हैंगे और गीत के बाद अपन आज हम जाने कि ग्राम पंचायत और स्वयं सहायता समूह की भूमिका, खासतौर पर ग्राम पंचायतों में भूमिका स्वयं सहायता समूह की, स्वयं सहायता समूह की का भूमिका रहेगी जहाँ पे भी एक प्रकाश डाले हैंगे का पात्रता ग्रामीण युवक और जो गरीब हैंगे उनको का सहयोग मिलना चाहिए, विशेष समूह जो बनाते हैं कैसे बनाते हैंगे, घटककार मापदंड का रथ है, उन विषय पर अपन चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे पहले अपन सुनते हैं जो 900 गीत को, बने रहो आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बात है।

अपना रेडियो अपनी बातें। अभी आप सुन रहे थे उत्तम सिंह यादव और उनके साथियों के आवाज में एक पहले से गीत को साथियों कार्यक्रम को आगे बढ़ात भाई। अपन जानत हैं कि ग्राम पंचायत में खास तौर पर स्वयं सहायता समूह की क्या भूमिका रत हैगी, बाबे साहब पर अपन बातचीत कर रहे हैं। आपको पता होनी चाहिए कि आजीविका कौशल के सफल क्रियान्वयन में विशेष कर अपने अधिकार के क्षेत्र में अत्यंत निर्धन परिवारों को लाभ पहुंचाने में

ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि आजीविका कौशल में कौशल विकास के लाने ग्रामीण सैचुरेशन अप्रोच अपनाई गई, जाकि लाने कार्यक्रम के बारे में जागरूकता फैलाने, जानकारी प्रदान करने के प्रयासों में मदद करने, कौशल विकास की मांग और नियोजन के लिए डाटाबेस तैयार करने, जॉब मेला के आयोजन में मदद करने तथा क्रियान्वयन के सभी स्तरों पर पीआरए की सहायता करने में ग्राम पंचायत मुख्य भूमिका निभाते हैं। ग्राम पंचायतों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत होगी कि महिलाएं अधिक अत्यंत कमजोर वर्ग कार्यक्रम के क्रियान्वयन में शामिल हैं, उन्हें संभावित उम्मीदवारों और संभावित उम्मीदवारों के अभिभावकों के साथ एक विशेष काउंसलिंग सत्र आयोजित करना होगा और कार्यक्रम की संभावनाओं के बारे में उन्हें जानकारी देनी होगी। जब पीआईए कौशल विकास का प्रशिक्षण देती है, तब ग्राम पंचायतें विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट प्राप्त करके तथा प्रशिक्षण पाने वाले उम्मीदवार के साथ सीधी बातचीत करके क्रियान्वयन पर नजर रख सकती है। ग्राम पंचायतों का क्रियान्वयन संबंधित मुद्दे जिला और राज्य मिशन के संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। ग्राम पंचायतें प्रशिक्षण के पश्चात उम्मीदवारों के लिए को दिए गए काम पर नजर रख सकती है। काम के विभिन्न पहलुओं की निगरानी करने के लिए उम्मीदवारों और उनके अभिभावकों के साथ बातचीत कर सकती है। शिकायत निवारण के हिस्से के रूप में कार्य कर सकती है। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका जो रहती है, वो आजीविका कौशल में कौशल विकास के माध्यम से निर्धन परिवारों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया है इसमें, और निर्धनों की संस्थाओं की क्षमताओं का इस्तेमाल करके नियोजन का लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। निर्धनों की संस्था HSG यानी स्वयं सहायता समूह, उनके संघ और तथा आजीविका क्रियाकलाप निर्धनों को स्वयं सहायता पर आधारित सामूहिक क्रियाकलापों तथा पारस्परिक सहयोग के लिए मंच मुहैया कराती है। लक्ष्य में रखे हुए लाभार्थियों को एकजुट करने, कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने, लाभार्थियों को निर्धारण में सहायता करने का निर्धारित युवकों के अभिभावकों हेतु काउंसलिंग सत्रों का आयोजन में मदद करने, पीआईए द्वारा क्रियान्वयन की निगरानी करने आदि सहित विभिन्न क्रियाकलापों में इन संस्थाओं को शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार पीआईए को अपनी परियोजना का क्रियान्वयन की कार्य नीति तैयार करने में एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूह की भूमिका को ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है यानी जरूरत है। अब बात आती है पात्रता। ग्रामीण युवक जो गरीब हैं, 18 से 35 वर्ष की आयु के निर्धन ग्रामीण युवक आजीविका कौशल के लिए लक्ष्य समूह हैं। विकलांग व्यक्तियों तथा विशेषकर अपेक्षित जनजाति समूह यानी PTG के व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष इसमें रखी गई है। विशेष समूह जिनमें विकलांग व्यक्ति, अवैध व्यापार में पीड़ित व्यक्ति, सर पर मैला ढोने वाले व्यक्ति, किन्नर, पुनर्वास किए गए बंधुआ जो मजदूर है को 16 वर्ष से अधिक की आयु में भी नामांकन की अनुमति दी जा सकती है, वसरते कि वे जॉब संबंधित प्रशिक्षण सहित अन्य प्रशिक्षण का कार्य पूरा होने तक 18 वर्ष के हो जाएं। निर्धनों का भागीदारी पूर्ण निर्धारण नामक प्रक्रिया के जरिए निर्धनों का निर्धारण किया जाएगा। यह प्रक्रिया NRLM कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस प्रयोजनार्थ मंत्रालय द्वारा PIP के लिए अधिसूचित किए गए प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाएगा। इस संभावना व्यक्त की जाएगी कि PIP से लाभार्थियों को बेहतर तरीके से लक्ष्यबद्ध करने में मदद इसमें मिलेगी। जब तक PIP के उपयोग से निर्धनों का निर्धारण किया जाता है, तब तक आजीविका कौशल के लिए लक्ष्य समूह के निर्धारण में BPL परिवारों की मौजूदा सूची का इस्तेमाल किया

जाएगा। उपयुक्त के अलावा ऐसे युवक जो विगत 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मनरेगा कार्यस्थलों पर काम से कम 35 दिनों तक श्रमिक के रूप में कार्य कर चुके हैं, बीपीएल सूची में ना होने के बावजूद इसके लिए पात्र होंगे। ऐसी आशा जताई गई है कि पीआईपी के दौरान उनका निर्धारण कर लिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर विशेष बल, राष्ट्रीय स्तर पर 50% निधि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित की जाएगी। इनके बीच निधियों के अनुपात का निर्धारण ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर किया जाएगा। इसके अलावा 15% निधियां जो अल्पसंख्यक समूहों के लाभार्थियों के लिए अलग से रखी जाएगी। राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम 3% लाभार्थी अल्पसंख्यक समूहों में से हों। कवर किए गए व्यक्तियों में से 1/3 लाभार्थी महिला होनी चाहिए। यह निर्धारण केवल न्यूनतम है। यद्यपि यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दोनों में से किसी भी श्रेणी में कोई पात्र लाभार्थी नहीं है और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी इसे प्रमाणित कर देती है, तब उनके लक्ष्यों को अन्य श्रेणी के लक्ष्यों में बदला जा सकता है। विकलांगों व्यक्तियों के मामले में अलग से परियोजना प्रस्तुत की जाएगी। इस परियोजना के लिए अलग प्रशिक्षण केंद्र होंगे। इनकी इकाई लागत इन दिशा निर्देशों में उल्लेखनीय इकाई लागतों में से अलग होगी। विशेष समूह जो होते हैं उसकी भी एक गाइडलाइन तैयार है। यदि भी विकलांग व्यक्तियों की अवैध व्यापार से पीड़ित व्यक्तियों, सर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों, किन्नरों, पुनर्वासित किए गए जो बंधुआ मजदूरों जैसे विशेष समूह तथा अन्य कमजोर समूहों के लिए अलग से कोई लक्ष्य नहीं है, फिर भी राज्यों को ऐसे विशेष समूह जो अक्सर छूट जाते हैं तो ऐसे को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष कार्यनीति बनानी पड़ती है। इन समूहों की चुनौतियों से निपटने तथा भागीदारी में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्य के स्वरूप को राज्यों द्वारा प्रस्तावित कौशल कार्य योजना में समाविष्ट किए जाने की जरूरत है। मूक बधिर, चलने में अक्षम, दृष्टिहीन व्यक्तियों के मामले में संभावित नियोजकताओं को संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता होगी ताकि उन्हें काम पर रखा जाना सुनिश्चित किया जा सके। विकलांग व्यक्तियों की नियोजन पर जुड़े प्रशिक्षण संबंधित नोट आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर वेबसाइट है, वहाँ पर उपलब्ध है नोट पूरे http://nrlmskill.in पर उपलब्ध है। यहाँ पर अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर घटक और मापदंड की बात करें तो आजीविका कौशल क्रियाकलापों को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो SRLM द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप और दूसरा है PIA द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप। अब आता है SRLM द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप, उनके लागत मापदंड। इस खंड में SRLM द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची, उनके लिए लागत मापदंड के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह राज्य नोडल एजेंसी पर भी लागू होगा जिन्हें राज्य आजीविका कौशल क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में पदनामित किया गया है। कौशल में कमी का आकलन। SGA का उद्देश्य कौशल और नियोजन के लिए ग्राम पंचायत बार मांग का पता लगाना, नियोजन हेतु विभिन्न कौशल श्रेणी में प्रतिभावना उम्मीदवार की उपलब्धता सुनिश्चित करना। हालांकि 10 वर्षों में किए जाने वाली जनगणना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कराए गए अध्ययनों से प्राप्त आंकड़े प्रारंभिक बिंदुओं हो सकते हैं, फिर भी SRLM को खुद या पेशेवर एजेंसियों के माध्यम से ग्राम पंचायत वार विस्तार आंकलन कराने की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आप इससे जुड़िएगा और आपको लगता है कि SRLM या NRLM जो मध्य प्रदेश में चलता है उनसे जुड़कर विशेष तौर पर ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं और आप बात कर सकते हैं साथियों हमें।

आशा है कि इसका दूसरा भाग हम अगले कार्यक्रम में जरूर आपके पास लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे, चूंकि हमारे चुनाव अभी अभी संपन्न हुए हैं, तो ऐसे में कुछ समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, किस तरीके से आपका नया सरपंच किस तरीके से काम करने में सक्षम है, क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, इसे इस पर गौर फरमाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। साथियों, अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 9219207749। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम से जाने की अनुमति। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

के पिता से वो आत्मा कह रही है, वक्त आने से पहले ही ढल जाती मैं। अरे वक्त आता मैं चली जाती, आप मुझे विदा कर देते, किसी गरीब के साथ में भेज देते, और अगर इसके बावजूद भी दिक्कत थी

आप आगे देखें, कहने लगी वो आत्मा, रहती अनपढ़ तो उस पर भी ना थी उजर। मैं अनपढ़ भी बनी रहती तब भी मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन मुझे जिंदा तो रहने देते।

की अगर आप होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 से सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और इस कार्यक्रम के माध्यम से खेती किसानी से जुड़ी बातचीत लेकर आते हैं। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में एक विशेष वार्तालाप को हम सुनेंगे, क्योंकि अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा पानी गिर गया है और ऐसे में हमारे किसान साथियों को क्या समस्या आ रही है, उस पर भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत करेंगे। साथ साथ में हमारे किसान साथी, हमारे जो जान पठा के विजय जी हैं, उन्होंने सवाल किया था कि हमारे जो धान की खेती, उन्होंने कुछ जगह हमारे धान की खेती डूबी हुई है, तो उसमें नैनो खाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उस विषय पर हम कल

से आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और खेत खलियान कार्यक्रम में साथियों, हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और समय समय पर मौसम आधारित जानकारी देते हैं। किसानों को किस तरीके से खेती में अपनी परिवर्तन करना चाहिए, क्या कुछ किस मौसम में कौन सी फसलों को लगाना चाहिए, कौन से बीज लगाना चाहिए, बीज उपचार की विधि, तमाम प्रकार की जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी। आज हम जो आप देख रहे हैं कि अगर इस क्षेत्र की बात करें तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, बहुत सारे हमारे किसान साथियों की फसल भी उन्होंने लगा दी है लेकिन बहुत सारी फसल नष्ट भी हो गई है। आज हम देख रहे थे, सुन भी रहे थे कि कई शहरों में अत्यधिक बारिश होने के कारण बहुत सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। कई कई किसान साथियों ने अपनी फसलों को बो भी नहीं पाए हैं, लेकिन अब जायज के चूँकि अब समय आ रहा है कि हम कौन सी फसल लगाएं। अगर सब्जियों की बात करें तो कौन सी ऐसी सब्जी है जो इस मौसम में लगा सकते हैं, तो आज हम इस मौसम में कौन सी हम लोग सब्जियों को लगा सकते हैं, कौन सी ऐसी पद्धति है जिसको हम अपने क्षेत्र में अपने खेती में अपना सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर, और सभी किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम।
0: तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि इस मौसम में चूंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है और इस मौसम में किसान साथी भी परेशान हैं, तो कौन सी ऐसी सब्जियां वो अपने खेतों में लगाएं ताकि उनकी जो आजीविका है वो चल सके।

0: जी सर, जैसा कि सर ने बताया है कि इस मौसम में सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, मतलब ज़रूरत से 2 गुनी तक बारिश हो गई है, जिसकी वजह से अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में लगी हुई सब्जियां और अदर फसलें भी सभी को नुकसान हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ, कई फसलें तो पूरी तरीके से नष्ट हो गई, और कुछ फसलें जो हैं जो 70 से 80% तक नष्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या बाजार में जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। अब किसान भाइयों को इसमें सुधार के लिए कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा हम फसलों को नए तरीके से लगा सकते हैं और उनको अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
1: जी बिल्कुल सही बात कही है कि हमारे किसान साथी सब्जियों को लगाकर उत्पादन अधिक ले सकते हैं। तो यही दिमाग में सवाल चलता है कि कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको इस मौसम में हम लोग लगा सकते हैं और इसकी तैयारी हमें किस तरीके से करना चाहिए।
0: बिल्कुल सर, सर सबसे पहले हम बात करते हैं कि खरीफ सीजन जो अभी चल रहा है, जिसको हम रेनी सीजन भी बोलते हैं, इसमें क्या है कि बारिश बहुत लंबी चली गई है, जिसकी वजह से फसलों की बुवाई की विधियों में थोड़ा सा परिवर्तन करके, क्योंकि जो सब्जियां हैं उनमें हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब हम पहले सब्जियों की नर्सरी तैयार करते हैं, फिर उसको हम दूसरी जगह मेन खेत में लगा सकते हैं।
1: सब्जियों को किस तरीके से लगा सकते हैं?
0: जी सर, सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि ऐसी फसलें जिनके बीज बहुत छोटे होते हैं, जैसे टमाटर, मिर्ची, भटे, इनकी जो पौध होती है वो हम पहले नर्सरी में, या बोल सकते हैं हम प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर में हम तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अभी हमारे खेत तैयार नहीं है, तो फसल तैयार, नर्सरी तैयार होने में भी लगभग 30 दिन का समय लगता है, तो चूंकि हमारे पास 30 दिन एक्स्ट्रा हैं, उनका हम कहीं छोटी जगह में पौध तैयार करें और खेत का अपन प्रबंधन साथ साथ में करते रहें, और जैसे ही हमको मौसम 1 या 2 दिन का खुला दिखे, और जैसे ही हमारी सीडलिंग 20 दिन से ऊपर की हो जाए, मतलब यह उसकी हाइट जो होती है, लंबाई वो 10 सेंटीमीटर से लेके 18 सेंटीमीटर के बीच में हो, उस टाइम हमें रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है।
1: जी।
0: तो हम खेतों में अपना जिस दिन खुला समय मिले उसी दिन हम खेत में रोपाई की क्रिया को करें।
1: जी। और रुपाई की क्रिया की अगर बात करें तो हम किस तरीके से रुपाई, चूंकि एक विधि रहती है रुपाई की, तो कौन सी ऐसी
0: जी
1: विधि
0: सर,
1: है, कितनी दूरी पे उसको लगाना चाहिए?
0: जी सर, जैसे हम अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग दूरी तय की गई है मीटर के हिसाब से, क्योंकि अभी क्या है कि बरसात का मौसम है, तो ज्यादा बारिश की वजह से खरपतवार की भी संख्या ज्यादा बढ़ती है खेतों में, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम फसलों की थोड़ा दूरी होती है वो एक लाइन मेथड में हम करें, चूंकि पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी बराबर हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या होता है कृषि क्रिया करने में आसानी रहती है। जैसे टमाटर के लिए हम जनरली 60 बाई 60 पे लगाते हैं, मिर्ची पे हम 60 बाई 45 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम पौधे को रोपण कर सकते हैं, और भट्टे में भी हम 60 बाई 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम भट्टे को रोपण कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और इसमें अगर लगाने की बात करें तो कौन से खाद बीज अपन को लगाना चाहिए, कितनी मात्रा में उसको, और किस तरीके से बीज उपचार करना
0: जी
1: चाहिए?
0: सर, सर ने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि मैंने अभी बताया जैसे कि बरसात के सीजन में खरपतवार की संख्या बहुत ज्यादा लगती है, और चूंकि हमारे जो किसान भाई हैं ना, उनके लिए अभी खाद की भी समस्या बहुत सारी हो रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको खेतों में यूरिया नहीं देना चाहिए अभी। यूरिया क्या करता है कि किसी भी फसल या खरपतवार दोनों को ही जल्दी से उनकी बढ़ोतरी कर देता है ग्रोथ में, तो उसको हम रोकने के लिए हम उसकी जगह क्या नाम है, MOP और DAP का हम उपयोग कर सकते हैं, वो भी आधी मात्रा का, जिससे क्या है कि हम इसको टॉप ड्रेसिंग रूप में या बुवाई के साथ साथ बेसल डोज के रूप में आधार खरपतवार आधार उर्वरक के रूप में हम उसको पौधों के साथ में ही दे सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो और इस खास तौर पर बरसात के मौसम में किसान साथियों को किस तरीके से देखभाल करना चाहिए?
0: जी सर बिल्कुल, अभी क्या होगा जैसे जैसे खरपतवार ज्यादा आएंगे तो खेतों में क्या होगा, अभी मौसम कीड़े भी ज्यादा आएंगे, उसके साथ साथ बीमारियों की संख्या भी बढ़ेगी। अब चूंकि हम सबसे पहले अभी सीजन चल रहा है सोलनेसियस वेजिटेबल का, जैसे टमाटर, मिर्ची, भटे और भिंडी, अब इनमें होता क्या है कि सर सबसे ज्यादा फ्रूट बोरर, और अभी पत्तियों पे आपको लीफ कर्ल वायरस दिखेगा, तो ये क्या होता है जैसे मौसम ठंडा होता है तो इनका अटैक बढ़ जाता है, तो इनको रोकने के लिए हम समय समय पे या तो बीज को उपचारित करते रहना चाहिए, और यदि आपकी खेत में ट्रांसप्लांटिंग हो गई है तो हम इसके लिए समय समय पे हम M45 का स्प्रे कर सकते हैं हम।
1: बिल्कुल। और जिन किसान साथियों की सब्जी, चूंकि कुछ कुछ किसान साथियों की बची हुई है सब्जियां, तो उसमें खास तौर पर अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारी बीमारी फैल रही हैं और बहुत सारी सड़न हो रही है, मतलब सड़ रही हैं सब्जियां, तो क्या करना चाहिए उन किसान साथियों
0: बिल्कुल
1: को?
0: सर, अभी क्या है, जैसे सर ने बताया कि खेतों में पानी की ज़्यादा होने की वजह से सब्जियां की रूट गलन और पत्तियों में सड़न पैदा हो रही, जिसको हम पीथियम अपेंडिडर्मेटम एक बीमारी होती है, फंगस के थ्रू ये फैलता है। तो हम इसको उपचार के लिए हम समय समय पे कार्बन डाइऑक्सीक्लोराइड COC, जिसको हम बोलते हैं, जिसका 1% सॉल्यूशन और साथ में ही हम मैनको जैप या M45 का 1% सॉल्यूशन हम समय समय पर 7 दिन के अंतराल पर 2 से 3 स्प्रे कर दें, तो इससे तुरंत उस डिसीज को आप रोक सकते हैं या प्रबंधन कर सकते हैं हम उसका।
1: बहुत बढ़िया जानकारी। और साथ साथ में हमारे किसान साथियों को ये भी जानकारी दीजिएगा कि जिन किसान साथियों ने खेती चूंकि नहीं कर पाई है, वो आगे चलकर किस तरीके से खेतों की अपनी तैयारी कर सकें।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि अभी हम रेनी सीजन या खरीफ में हम थोड़ा सा लेट हो गए, वो भी बरसात की वजह से, तो हमारे जो आने वाला जो सीजन है वो खरीफ का होगा, क्योंकि खरीफ में सब्जियों का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम खेत को प्री प्लान तैयार करें और हम अगेती फसलें जैसे फूल गोभी के पत्ता गोभी और इसी के साथ साथ हम टमाटर को भी फिर से ले सकते हैं खेतों में, और साथ साथ में अभी धनिया का उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा आपको अगले सीजन में।
1: एक चीज और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि चूंकि भिंडी भी हमारे किसान साथी लगाते हैं, लगाई भी है, क्या करना चाहिए उन किसान साथियों को?
0: जी सर, जैसा कि हमने बताया था कि इसके अलावा भी भिंडी एक महत्वपूर्ण फसल है इस सीजन के लिए, क्योंकि उसकी ट्रांसप्लांटिंग नहीं होती है, तो उसके लिए किसान भाइयों को जो बीज है वो आपको वायरल फ्री बीज अभी मार्केट में उपलब्ध है, बहुत सारी उसकी वैरायटियां हैं, तो हम उसको ले सकते हैं। जैसे हम बात करें अरका नाम का वैरायटी की, या पूसा भिंडी 5 की, या आपका पूसा मखमली वैरायटी की, या काशी लालमा वैरायटी। ये भिंडी में सर्वोत्तम उत्पादन के साथ साथ ये वायरस फ्री वैरायटी भी हैं, जो चूंकि भिंडी के उत्पादन को बढ़ाती हैं और ये जल्दी से जल्दी इसमें पिकिंग आ जाती है बाकी भिंडी की वैरायटी की अपेक्षा।
1: जी। और कितने दिनों में मतलब सब्जी हमने तैयार हो जाती है?
0: भिंडी क्या है सर, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, मतलब ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। अगर भिंडी को ट्रांसप्लांटिंग लगाने के तुरंत 45 दिन बाद हम इसकी पहली पिकिंग खेत में ले सकते हैं, और ये पूरी जो फसल का ड्यूरेशन है वो 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है आपका। तो
1: अच्छा।
0: चूंकि जो मौसम की वजह से ड्यूरेशन छोटा रह गया, उसमें आप पूरी फसल भिंडी की ले सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। आशा करते हैं कि हमारे किसान साथियों को ये जानकारी जो हमारे खेत कल्याण कार्यक्रम में दी जा रही है, वो बेहद उनके लिए फायदेमंद भी होगी और हमारे किसान साथियों के लिए एक नई पद्धति के रूप में अपने किसान साथी अपने खेतों में लगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, ताकि उनकी आजीविका को हम बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद किसान भाइयों।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और अभी आपने डॉक्टर देवेंद्र जी को सुना, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने सब्जियों को लेकर दी है कि किस तरीके से हमारे किसान साथी तैयारी कर सकते हैं, कौन सी वैरायटी है जो अपने खेतों में वो लगा सकते हैं, कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। क्योंकि जब तक हम विभिन्न प्रकार की पद्धतियों को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति से अगर हम अपनी खेती को करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मुनाफा हमारे किसान साथियों को अधिक होगा। और हमें वैज्ञानिक पद्धति से बात करनी चाहिए और खेती भी करनी चाहिए, साथ साथ में जो सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो स्प्रिंकलर को लेकर, ड्रिप को लेकर, तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उसका भी हमारे किसान साथियों को लाभ लेना चाहिए। हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 9219207749, या फिर चिट्ठी के माध्यम से आज आप भेजना चाहते हैं तो पत्र व्यवहार का पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तिगला के पास ओरछा। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से

विधा बुंदेली नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईवेरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन एक विधा को सुने थे, विधा को आनंद ले थे। यही क्रम में आज विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन मिले भैया प्रकाश कुशवाहा जी से, जो गुदरई के रहवाए हैं। और उनसे जाने के आपने जो विधाएं कहाँ से सीखी हैं और आपने कहाँ कहाँ गाँव है, ये सब बातें अपन प्रकाश भैया से करें और उनसे जानकारी अपन जानब चाहे। सो यही के संगे संगे अपन प्रकाश भैया जी से मिलवे से पहला एक बढ़िया से गीत को सुनत, गीत को आनंद लेत, और फिर ये गीत के बाद अपन प्रकाश भैया से बात आगे करें। तो कहे ना अपन प्रकाशी भैया के गाय भय गीत को अपन सुन लेते हैं। सो आप सुनते ही गीत को जिया गा रहे हैं प्रकाश भैया जी।

0: बिल्कुल दोस्तों, अभिमान त्याग देना जो तुझ में समाया है। देखो कितना बढ़िया गीत अपन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। गीत को गा रहे थे भैया प्रकाश चंद कुशवाहा जी। अब आज दोस्तों प्रकाश चंद जी से आगे बात और करते हैं कि आपने कहाँ से सीखी है और कैसे जब विधाएं सीखी हैं। सो आप मिलते हैं प्रकाश भैया जी से। अच्छा प्रकाश भैया, जा बात बताओ कि बात करें अपन गावे बजावे की, तो आपने जो गावो कैसे सीखो?
1: भैया हम तो छोटे रहते जब सुगावन में राम सभा होती।
0: अच्छा,
1: महीना भर में कहो एक दिन बैठ जाए, कहो महीना भर में दो बार बैठ जाए, और कहो हफ्ता में एक बार बैठ जाए।
0: अच्छा, तो राम सभा में बैठे,
1: राम सभा में जाऊते।
0: अच्छा, इसके अलावा आपने कहा गुरु बनाओ तो कैसे?
1: नहीं, हमने गुरु बनाओ तो भैया एक अपने रंगीला साहब हते।
0: अच्छा, रंगीला?
1: हाँ, रंगीला।
0: ये कहाँ के हते रंगीला?
1: हाँसी के हते।
0: हाँ,
1: आज भी है।
0: अच्छा, उनका रंगीला नाम कौन नाम से जाना तूने?
1: रंगीला रंगी राही।
0: रंगी राही?
1: हाँ, रंगीला साहब बोला तूने।
0: हाँ,
1: कुशवाहा जी है
0: तो उनसे आपने सीखी।
1: हाँ, उन...
0: अच्छा, उनने आपको क्या चीज बताई थी सबसे पहले के कौन हिसाब से आपने गुरु मानो तूने?
1: अब जो मानो तो क्या बहुत अच्छा लिखा था।
0: अच्छा, लिखा था ते?
1: हाँ, वे लेखक है।
0: हाँ,
1: तो उनकी लेखनी पे हम लोगों ने गाओ थोड़ा सा, हम लोगों को अच्छा लगा और उनकी वातावरण अच्छा लगा, इसे हम लोग थोड़ा थोड़ा गावो सीख गए।
0: बिल्कुल सही बात है। जब आपने देखो लेखनी की बात कही तो आप जो बता पाए कि आपने उनकी सबसे पहली लेखनी कहा थी, बात जो उन्हें लिख के आपको दी थी कि आपने गाई हो उनकी लिखी बची?
1: देखो
0: कहा गाओ तो आपने ऐसो?
1: अब देखो उन्होंने एक बहुत पहले एक चीज लिखी थी शुरुआत में।
0: हाँ,
1: एक बुंदेलखंड की चीज लिखी थी।
0: हाँ,
1: रंगीला साहब आते हुए।
0: हाँ,
1: और वे लिखते अपने, अब भजन कीर्तन है सब चीजें हैं, तो भजन भी लिखते हुए लोकगीत भी लिखते, अबे भी लिखत भी,
0: अबे भी लिखत,
1: अबे भी लिखत है।
0: हाँ,
1: लेकिन अब बहुत
0: अच्छा। आपने उनसे संपर्क कब से नहीं करो, आपकी मुलाकात उनसे कब से नहीं हुई?
1: अभी हमारी कम से कम 5-6 साल से,
0: 5-6 साल से उनसे संपर्क नहीं हो
1: पाया।
0: अच्छा, तो आपने उनकी का चीज गाई का आपको है ध्यान के कौन चीज आपने गाई?
1: अब कैसे अभी याद नहीं है उसमें।
0: हाँ, तो उनने कई चीजें ऐसी आपको
1: गाई है, ले गई है, पार्टी भी हम लोगों की बनी है।
0: अच्छा।
1: हाँ, मंडल भी है।
0: अच्छा, मंडल भी?
1: मंडल भी है।
0: तो आपने कभी रेडियो बुंदेलखंड पे गाओ?
1: हाँ, गाया है हमने रेडियो बुंदेलखंड पे गाया है।
0: तो भी जो रेडियो बुंदेलखंड पे आपने गीत गाए वे उन्हीं के लिखे गाए या फिर कछु अपने और कवियन के हैं?
1: नहीं, उन्हीं के लिखे गाए हमने।
0: अच्छा, उन्हीं के लिखे?
1: रंगीला साहब के लिखे गाए।
0: अच्छा।
1: हाँ,
0: तो आपने कछु जो गाओ थे रेडियो बुंदेलखंड पे उनको तंतुरो याद है कि हमने का चीज गाई थी?
1: हाँ, हमने एक वो गाई थी का? तो उनका थोड़ा सा एक गजल थी।
0: हाँ,
1: अभिमान त्याग देना।
0: अच्छा,
1: एक गजल गाई थी हमने, वो बहुत शुरुआत में गाई थी हमने, आज कम से कम 6-7 साल पहले।
0: हाँ,
1: तो थोड़ा सा याद है कि अभिमान त्याग देना तुझ में जो समाया है।
0: हाँ,
1: हंसा की चाल भैया कभी चल नहीं पाया है।
0: हाँ,
1: हंसा की चाल कौआ कभी चल नहीं पाया है, अभिमान त्याग देना तुझ में जो समाया है, वो हंसा की चाल कौआ कभी चल नहीं पाया। ये चीज गाई थी
0: आपने? ये चीज गाई?
1: हाँ।
0: अच्छा, जब से आपने उते से गावो छोड़ो, मतलब जब उते रिकॉर्डिंग करे आए थे, उके अलावा फिर बैठे आप कहूँ मंडल में सभा में के?
1: नहीं, हम जब से वहाँ से छोड़ा सो हम लोग बैठे नहीं पाए है।
0: हाँ,
1: अपने काम में बिजी है, बच्चे हो गए हैं, तो थोड़ा गावो बजावो कम हो गए।
0: सही है, अब गृह जीवन में
1: समस्याओं से बहुत जूझना पड़ रहा है।
0: सही बात है,
1: क्योंकि कुछ है नहीं अपने पास, मिल जाएगा, जमीन नहीं है।
0: हाँ, सही बात है।
1: तो अपन तो मजबूरी कर रहे हैं और पाल रहे हैं।
0: सही बात है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो एक संगे संगे जो गावो बजावो है, इसे मनुष्य के जो जीवन है इस पे क्या प्रभाव पड़ती है गाय से?
1: एक जो पुरानी इतिहास याद आते हैं कि हम पहले कैसे थे।
0: हाँ,
1: आज क्या है हम लोग।
0: सही बात है
1: भाई, गाने बजाने की एक जो परंपरा है।
0: हाँ,
1: बुंदेली भाषाएं हैं।
0: हाँ,
1: इनमें सारी भाषाओं का कीर्तन भजन होते हैं।
0: हाँ,
1: तो एक यही है कि हम लोग एक इतिहास को उठा लें अपना, कि कोई इतिहास ही से गाया जाता है।
0: हाँ, सही बात कह रहे, इतिहास से भी गाया जाता है।
1: तो आज पुराना इतिहास को उठा के देखें। हाँ, अपन तो पुराने इतिहास में बहुत कुछ मिल रहा है।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और अब पुराने इतिहास तक कौन जा पा रहा है?
0: सही बात,
1: अब नए अपने अपने बना रहे हैं।
0: और नए पुराने इतिहास को तोड़ मरोड़ के
1: नए
0: तरीका से बना
1: रहे, नए तरीका से बना रहे,
2: कट पीस में आने लगे।
0: हाँ, कट पीस में आने लगे। सही बात कह रहे हैं आप,
2: संगीत और गायन टूटे हुए हृदय की औषधि है।
0: हाँ, टूटे हुए हृदय की औषधि है, सही बात कह रहे। और गावे बजावे से अपन खो जो अपनो
3: शरीर है या फिर उमंग पैदा होते ही
2: शक्ति संचार पैदा हो, शक्ति को संचार पैदा हो,
3: शक्ति को संचार पैदा होते ही। चलो बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं उत के अगर अपन भक्ति में हो जाए या फिर गावे में उतर जाए तो अपन सब दुख भूल जाते हैं।
2: हाँ? पे सही बात है, सही बात है कि जब आदमी
3: गावे में
2: कीर्तन पे आ जाता है तो हाँ? वो सारी चीजें छोड़ देता
3: हाँ?
2: है, क्योंकि उसको सतता ही उसमें दिखाई देती है
3: बिल्कुल
2: कि अच्छा और बुरा क्या है, तो अपने आप नियमों का पालन करने लगता है।
3: सही बात है। तो इसके अलावा आपने और कछु सीखो कभू ऐसे, जैसे क्यों पार्टी में गए हो कभू आपकी आमने सामने जवाबी कीर्तन में गए हो?
2: जवाबी वाबी ना लड़ते हैं ना अभी आज तक कोई गाया है?
3: अच्छा आपने जवाबी में नहीं गाओ?
2: नहीं नहीं, हम नहीं गाते हैं ना, हमको हमने सबसे बड़ा समस्या हमारे पास में यही रही है कि हमको इतना समय नहीं रहा है और ना तो हम इतना गा पाते हैं।
3: सही है।
2: थोड़ा बहुत बहुत हमारे माता दीन भैया आ जाते हैं सो हमने बोल दिया है।
3: चलो बहुत अच्छी बात। वो कहावत भी नहीं है कि अगर मन में है होलक
2: खंजड़ी का ढोलक,
3: हाँ है क्या नहीं? सही बात है। अगर मन में होलक है तो ना खंजड़ी चाने ना ढोलक चाने, अपने गुनगुना लेते।
2: अभी पहले की परंपरा में सवेरे 5 बजे जनी मान से उठ जाऊते।
3: हाँ बिल्कुल सही बात।
2: ट्यूशन लगाती 5 बजे उठ के पीस रही हूँ गावियों को, बड़ा शौक है तो उस टाइम में।
3: हाँ बिल्कुल सही बात।
2: भी कर रही हूँ गावी रही, गा रही हूँ कम से कम 10-10 किलो पिसिया पीछे गई।
3: सही बात।
2: पूरे परिवार को चक्की पे कहूँ पिसावे आटो नहीं गई।
3: सही बात कह रहे हैं आप।
2: उनने अपने वही पिसा के
4: चाय बना दी
2: गावे गावे।

0: ने 10 किलो गेहूँ पीस लो अपने मणि मन को बना के खुआ दो।
1: सही बात,
0: लेकिन उन्हें जो शौक है तो हमें गाने हैं।
1: हाँ, सुबह चकिया के बहाने गा भी लेती,
0: गा भी लेती
1: और अपना काम भी कर लेती है, परिवार के खावे को पीस लेती,
2: बीमार नहीं होती
1: और गा लेती
0: है।
1: सही बात, कहा बीमार होने,
0: हम क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं बीमार। आज देखो तुम तो 100-100 साल की बाई आज भी बैठी है।
1: सही कह रहे, सही कह रहे,
0: अभी बैठी है।
1: हाँ, नहीं, बिल्कुल
0: गा रही है खूब।
1: अच्छा प्रकाश भैया, आपसे एक बात और जानना चाहे कि आपकी माता जी को कब हुआ आपने देखो गाउ चकिया पीसर?
0: नहीं, हमारी माता जी ने खूब गाया है,
1: है?
0: आप तो बुढ़ी हो गई। खैर
1: नहीं, आप तो बुढ़ी हो गए, लेकिन जब भी अपने परिवार चला उठती, अपने बाली बच्चन हो खुआ पिया उठती, उस समय पे तो आपने देखो ही है कि माता जी पीस रहे हैं, गा रहे हैं।
0: खूब गाया उन्होंने, खूब उन्होंने चक्की चलाई वो।
1: हाँ,
0: चकिया चलाई।
1: हाँ, और आपकी शादी क्या साल की हते जब हो गई थी?
0: हमारी शादी करीब 30-32 साल की लगभग में हुई भैया।
1: तो आपकी मैसेज को क्या नाम है?
0: हमारी मैसेज का नाम है जानकी देवी कुशवाहा।
1: जानकी देवी कुशवाहा।
0: हाँ।
1: अच्छा, कहूँ जानकी देवी ने पीसो?
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं मिलो
1: उन्हें, नहीं उन्हें नहीं मिलो। अच्छा, जब चकियाँ नहीं हथ बची थी पीसवे के लाके, या फिर जो पीस के नहीं जानती, या फिर
0: चकियाँ तो आज भी रखी?
1: चकियाँ तो आज भी रखी।
0: हाँ, लेकिन
1: लेकिन सुख सुविधाएं मिल गई इन्हें।
0: हाँ,
1: जब पहला चक्की नहीं रखती थे गाँव पुरा में, क्यों चक्की नहीं होती? अब तो चक्की हर मोहल्ला में है, हर जगह है,
0: हर जगह चक्की हो गई है।
1: और कछु ट्रैक्टर भाई चक्की चल गई, घर जाके पीस
0: जाकर पीस रही है।
1: तो आपकी ने शौक न गावे को शौक रहा हूँ न पीस भी?
0: बिल्कुल नहीं।
1: जब जिनने पीस ही नहीं है तो गाँव कहाँ पे भी?
0: अब बात तो मैं है ना पूरी।
1: हाँ,
0: जब गाने का शौक हो जब तो वो पीसे।
1: सही बात है,
0: गाने का शौक नहीं है।
1: सही बात,
0: सब सुविधाएं दे रही है।
1: हाँ, सब सुविधाएं हो गई। चलो बहुत अच्छी बात प्रकाश भैया आपने जब बताई, और इनने कहूँ गाँव नहीं
0: है भैया, इनको नहीं मिला मौका।
1: चलो,
0: ये गाने का मौका भी हर किसी को थोड़ी मिलता है।
1: सही बात है, सही बात।
0: जिसके अंदर एक लगन होती है कि हमको ये काम करना है,
1: सही बात,
0: कोई चीज सीखना है, तब कोई उसको सीख पाता है।
1: बिल्कुल सही बात है। तो फिर और इन्हें वो भी नहीं मिला सीख लाने, अगर भी चकियाँ चलत होती तो इन्हें परवस पीसने आओ तो, और गाँव नहीं आते।
0: अनुभव तो सब है, लेकिन अब आज का है कि आदमी शर्म अपनी शर्म के मारे जाता।
1: हाँ, सही बात कह रहे हैं आप,
0: करन नहीं चाहिए।
1: हाँ,
0: अब तो आदमी को सब है।
1: हाँ, सही बात कह रहे हैं,
0: सब करन चाहू।
1: हाँ,
0: लेकिन अब शर्म लगत हर आदमी को।
1: हाँ,
2: में अगर चक्की चले तो
0: अगर गा भी रही वे तो कहीं वो सुन ना ले, अरे का सुन नहीं ले।
1: सही बात है,
0: गाने हैं तो गावे में कुछ सुन ले,
1: कोई बात ही नहीं है। बूढ़ी पुरानी अपनी माताएं तो देखो, तो 4 बजे रात से
0: हमारी माता जी आज कम से कम 105 साल की हो गई है।
1: अच्छा,
0: और आज भी उनसे हम कहें तो भैया भाई तुमसे 10 मिनट घुमा दें।
1: सही बात कह रहे हैं आप, सही बात कह रहे हैं आपके भी, अभी भी गा सकते,
0: अभी गा दे भी।
1: चलो बहुत अच्छी बात है प्रकाश भैया, आपने देखो इतना कीमती समय निकाल के दो खिलाने, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भैया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको भी।
3: देखो दोस्तों, जैसे भैया प्रकाश चंद्र कुशवाहा जी और इनसे अपन ने बातचीत या करी है, यही बातें के संगे संगे आप और कह रहे हो कि माता दिन भैया ब्लैक टाइम से प्रकाश भैया जी से बातें कर रहे हैं, मनोरंजन की तरफ को ध्यान नहीं दे रहे। सो आप मनोरंजन के लाने एक बढ़िया से गीत को सुनत, गीत को आनंद ले। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में, और सुनते रहो जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। आप सुन लेते हैं एक और बढ़िया से गीत, खोल लेते हैं गीत को आनंद।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप सुन रहे थे आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। सो दोस्तों, आप सब जन को आज के कार्यक्रम कैसे लगे। अब दोस्तों, आज की सभा इतनी संपन्न होत है। सो चलत चलत आपो ने लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आपो ने फोन नंबर पे और पते पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सके। दोस्तों, हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49। सो ई नंबर पे आप फोन लगा के और हमें बता सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे। अब दोस्तों लिख लो हमारे पते को, हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। सो आप और ई पते पे चिट्ठी पत्री लिख के भी भेज सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। अब आज की सभा को इतनी समापन हो गए को समय हो गया है। नमस्कार।
1: ये आवाज है बुंदेलखंड की।